0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

0: प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. National security advisors and senior security officials from the BRIC nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
2: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
1: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with UAE in recent several years has seen a major upswing, in which the defense partnership also plays an important role. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development, and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges.

0: chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. India and the United States opened high-level trade talks to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamison Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi yesterday. Both sides are aiming to conclude an interim trade pact before 24th of July, when Washington's temporary 10% tariff on imports from trading partners is set to expire. The International Maritime Organization announced an evacuation plan for more than 11,000 seafarers still stranded in the Strait of Hormuz. IMO Secretary General Arsenio Dominguez said in a statement that IMO has secured the necessary safety guarantees and verified safe navigation conditions. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in the United States. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं. लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेतीहर वास्ते. जानकारी का विषय है बकरी पालन के फायदे.
2: किसान भाइयों राम राम. राजस्थान के अंदर या किसो भी प्रदेश है बटे बकरी पालन को एक व्यवसाय जिको है वो बड़ो सफल व्यवसाय है. बकरी हमेशा सुई गरीब की गाय कही गई है. आपनी जिकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है बिंगमा पशुपालन में बकरी पालन आपको एक बहुत ही महत्व रख है और लगातार वो महत्व बढ़ने लाग रही है. आजकल वो खाली कमजोर वर्ग या छोटो समूह ही कौन करण लाग रहे हो बल्कि बड़े पैमाने पर व्यवसाय के रूप में अपनायो जान लाग रहे है. और इंगमा कटे न कटे अपनी सरकारां भी जिको है वह समय समय के ऊपर स्कीमा निकाल के व्यवसायी जिको है बिन मदद करण लाग रही है. राजस्थान में सिरोही, मारवाड़ी, जमुनापारी, जकराना जिसी प्रमुख जिकी बकरी की नस्ल न है वह पाई जावे. सही देखभाल, संतुलित आहार और सही प्रबंधन बकरी पालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना देवे. के तरीके छू आपा बकरी पालन छू आए ले इसका. सब छू पहला तो दूध बेच गए. बकरी को दूध जी को है वो बड़ो पौष्टिक हुए और देखो गए है कि बहुत सी बीमारियां के अंदर जिका डॉक्टर है वह भी आपने राय देवे कि बकरी को दूध पीणो चाहिए. दुधारू जी की बकरियां बने बेच गए आपा बकरियां छू लाभ ले इसका. इनके अलावा मांस जी को है वो भी बकरियां को बिके. बकरा जिका है वह मांस के रूप में बेचा जावे. ऊन खाल इन्हें बेच के भी आपा आय ले इसका. सब छू बढ़िया है इंगी जिकी खाद हुए मिंगणियां जिका आपा निकवा बकरी की बीट आ खाद के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हुए और बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है जब आपा आने खेतों में मां गाला. तो इंगी खाद बेच के भी जिका पशुपालक भाई है वह आय ले सके. इंग मां सब छू बढ़िया प्रबंधन आपा ने जरूरी है आवास को. बकरी को जिको आवास है बिंगी व्यवस्था को जिको जिग्या हुए बा छायादार होनी चाहिए, ढकेड़ी होनी चाहिए, की स्थान जिको है वो खुल्लो होना चाहिए और चारा और पानी की व्यवस्था बैठे बहुत ही बढ़िया तरीके छू आप कर देवा तो पशुपालन जिको है वो आपनों कामयाब हो सी. बाड़ो जिको है वो पूर्व पश्चिम दिशा में बनावा ताकि सूरज की चीज की सीधी गर्मी है और ताप है भी हूँ आप बकरियां ने बचा सका. हर व्यस्क बकरी वास्ते एक हूँ 1.5 वर्ग मीटर को जिको जिगह है बा चाहिए हुए. जिका नर बकरा है या छोटा बच्चा है दुधारू बकरियां और बीमार पशुओं से हमेशा अपने अलग रख.

रखनी चाहिए। तो बंग आवाज जी को है वो अपन ने अलग बनाना चाहिए। कोई भी अगर छोटो बच्चों या कोई नर बकरो या दुधारू बकरी है बीमार हुआ है तो बिन आपा बी आवास के अंदर भेज देवा और अलग रखा। हमेशा सफाई व्यवस्था पर ध्यान देवा। बकरियां को जी को समूह है वे हमेशा समूह के अंदर ही रहे, इन वास्ते साफ सफाई जरूरी है ताकि बकरियां जी की है वह बीमार ना हुए और कोई एक आधी बकरी जब बीमार है तो बीशु बीमारी जी को है वह फैले ना। बर्तन आपा नियमित रूप से साफ करा। बर्तन को मतलब हो गयो जी हाँ पानी की आपा खेड़ी बना दिया तो बी खेड़ी ने लगातार समय समय के ऊपर आपा बिंगी सफाई करता रहा। और जे कोई चारो गिल्लो हो गयो है या बांस मारन लग गयो है तो बी चारे की भी आपा सफाई करा और दूर रखा। मिंगणियां को जी को निस्तारण है वो आपा रोजाना करा और बने बाड़े से दूर जी का गड्ढा है बंग में डालता रहा और बटे बेड़ी करके आपा बेच सका। चारे और पानी की जी की खेड़ियां हैं बन आपा साफ रखा। आपा बात पहले भी कर ली जी का बाहरी और अंदर परजीवी हुए बंगी रोकथाम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पशुओं के अंदर भी रोग हुए और बारिशों भी रोग आवे। बाहरी जी का परजीवी है जियाँ चिंचड़ है जुआ है अंगे प्रकोप वास्ते आपा ने दवाई को समय समय के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। अंदर का जी का परजीवी है बाने बचाव वास्ते नियमित अंतराल पर आपा ने कृमिनाशक दवा जी की है बा अपनी बकरियां ने पशुधन ने प्यानी चाहिए। टीकाकरण जी को है वो नियमित रूप से आपा ने करवाना चाहिए। जके शू संक्रामक जी का रोग है बने रोको जा सके जिया फिड़किया है माता रोग है मुंह पका खुरपका ए रोग ईसा रोग है जिका संक्रामक रोग है अन आपा टीकाकरण से दूर कर सका और सही समय पर सही जानकारी से आपा ने टीकाकरण करवाना चाहिए। संतुलित दानों चारों सप्लीमेंट आपा बिन देवता रवा। सप्लीमेंटू के मतलब हो के पशु में ताकत की जिकी चीज़ें हैं वह आपा देवता रहा जिका शू पशु के अंदर कोई भी कमी है तो वह पूरी होती रहे। एक बकरी की बात करा किसान भाइयों तो आपा प्रतिदिन बिंगे शरीर के वजन के हिसाब से 3.5% मात्रा के बराबर सूखो जी को खाद है वो आपा ने देना चाहिए। इनके अलावा खेजड़ी की सांगरी लूंग बेरी गोपालो या देसी बबूल की जी की पत्तियां हैं वह भी इन कमी ने पूर्ति कर देवे। दूध देने वाली प्रजनन योग्य जी की बकरियां हुए जी की ब्यान पर हुए वह तेजी से बढ़ने वाले बच्चे ने अतिरिक्त संतुलित आहार आपा ने देवता रहना चाहिए। 40 किलोग्राम वजन वाली जी की गर्भवती बकरी हुए बिना कम से कम 250-300 ग्राम दाणो आपा ने देना चाहिए। दुधारू बकरी ने 250 ग्राम दाणो निर्वाह राशन के रूप में और प्रति लीटर दूध पर 400 ग्राम दाणो उत्पादकता वास्ते आपा ने जरूरी हुए और वो आपा ने पशु ने खुआनो चाहिए। बकरियां ने पीण वास्ते प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना चाहिए। अब जियाँ गर्मियां आसी तो थोड़ो ठंडो पानी पियावा और सर्दियां के अंदर विशेष तौर से ध्यान रखा कि आपा थोड़ो न्यायो पानी जी को है वो पियावा। इनके अलावा सर्दियां के अंदर आपा बकरी ने खुल्लो भी छोड़ा। विटामिन डी वास्ते आपा ने बकरियां ने धूप दिखानी भी जरूरी हुए। सर्दियां के अंदर आपा 10 बजे लेके 5 बजे तक धूप में बिठा सका और गर्मियां के अंदर आपा 10 बजे तक बारह रागे और बिंगे बाद में बाड़ा में आपने बकरियां ने बांध सका या खुल्लो भी छोड़ सका लेकिन छायादार जगह आपा ने बा वास्ते रखनी हो सी। लवण धातु नियमित रूप से देवा विशेषकर जद जद पशु दूध देने लाग रहे हुए गर्भवती हुए या बिंगी वृद्धि होने लग रही है बी समय लवण धातु देनो बहुत ही जरूरी है। बकरियां के बाड़े में खनिज लवण की ईंट जके नापा मिनरल ब्रिक वा बा रखा ताकि लवण धातुओं की जरूरत जी की है बा पूरी होती रहे। बकरी पालन सही देखभाल और सही प्रबंधन के सागे एक सफल और बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बन सके और बनन लाग रही है। किसान भाइयों बकरी पालन के व्यवसाय की आप जब बात पर आ गया तो विशेष तौर से ध्यान रखा कि इंग माँ अपनी सरकारा भी अपनी मदद करने लाग रही है तो नज़दीक का जी का कृषि विकास केंद्र है या जठे भी इन चीज़ को प्रशिक्षण देवे सबसे पहला आपा बठे संपर्क करा और बकरी पालन को जी को व्यवसाय आपा करना चाहवा बिंगो प्रशिक्षण जरूर लेवा। प्रशिक्षण लेने से आपा ने कह उसी कि जी की नई तकनीक है बिंगे बारे में आपा ने ध्यान पड़ेगो और के तरीके से आपा ने सही प्रबंधन करना है सही देखभाल आपा बकरी पालन की कर सका बकरियां की सही देखभाल और सही प्रबंधन ही आपा ने इन व्यवसाय के अंदर सफल बना सी।

0: के तरीके शू बिना आप आहार देनो है, और बी आहार ने अगर आपने घरे तैयार करा तो वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और बढ़िया वैगो। आज के समय में आप देखा कि खेजड़ी की सांगरी लूंग ए चीज़ मिलनो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी बेरीगो जी को पाल है, देसी बबूल की पत्तियां हैं, ए आपने सुलभ तरीके शू मिल जावे, और आप जद आ चीज़ों की व्यवस्था कर देंगा या बकरियां ने खुलो छोड़ांगा तो वह आपे आप चरण भी लाग जाएगी। इन तरीके शू आप प्रबंधन करके बकरी पालन के व्यवसाय ने कामयाब कर सका, तो इन पर आप विशेष तौर छू ध्यान देवा। अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीहर वास्ते। जानकारी का विषय था बकरी पालन के फायदे। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड के 16.1 मेगाहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोतों, आइए सुने श्री रामचरित मानस का। आज आप सुनेंगे सुंदरकांड में भाग संख्या 284 को, और कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग संख्या 284।

हनुमान से श्रीराम की मुद्रिका पाकर सीता को पवन पुत्र के श्रीराम सेवक होने का विश्वास हो गया। हृदय में अगाध प्रीति उमड़ आई। माता सीता की ये दशा देख हनुमान उन्हें धीरज बंधाते हैं। मैं तो आपको अपने साथ अभी ही यहाँ से लिवा ले जाता, किंतु स्वामी की आज्ञा बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी कुंदन कटारिया का आपका साथी हाजिर है ये प्रोग्राम लेकर। इस कार्यक्रम में कुछ विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। बात करते हैं सबसे पहले विश्व बंधुत्व की, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण संसार को एक परिवार मानना और सभी मनुष्यों के साथ बिना किसी जाति धर्म या रंग के भेदभाव के भाईचारे और प्रेम का व्यवहार करना। ये प्राचीन भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा है जो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी ही परिवार है इस सिद्धांत पर आधारित है। ये अवधारणा व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर शांति सहयोग और सद्भाव बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके कुछ पहलू हैं जैसे कि सार्वभौमिक प्रेम और सम्मान। ये भावना सिखाती है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। दूसरा है संकट में सहायता। सच्चा विश्व बंधुत्व केवल विचारों तक सीमित नहीं है बल्कि विपत्ति अकाल और व्यक्तिगत संकट के समय एक दूसरे की मदद करने में दिखता है। तीसरा है सांस्कृतिक सहिष्णुता। ये किसी भी धर्म विचार या संस्कृति को दूसरों पर थोपने के बजाय सभी के सह अस्तित्व यानी कि जियो और जीने दो जिसका समर्थन करता है। इस वैश्विक मानवीय भावना को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। ये होता है विश्व बंधुत्व यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। यही हमारा परिवार है, हम सभी मिलकर जहां रहते हैं। आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत फिल्म विश्वात्मा से। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार विजू शाह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना सुंदरकांड में भाग संख्या 284 को, और कलाकार थे अनुराधा पौडवल और सुरेश वाडेकर। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

आदमी, जिंदगी और ये परमात्मा, जीवन के हर मोड़ पर प्रभु हमें याद करते हैं और इसके साथ जुड़ी हुई है हमारी चारित्रिक दृढ़ता। व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। इस गुण के अंतर्गत व्यक्ति के चरित्र की सूची दृढ़ता, संयम, मित्र, ये सभी आते हैं। इन गुणवत्ता के माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन में उच्च ध्येय और विशेषाधिकार महत्व वाले कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती है। चारित्रिक दृढ़ता से व्यक्ति का जीवन मजबूत और सफलता की ओर विकसित होता है। उन्हें अपने लक्ष्य तक के लिए दृढ़ विश्वास होता है कि वे जीवन के हर मोड़ पर अपने लक्ष्य से विवेक की समझ रखते हैं। चारित्रिक दृढ़ता का विकास व्यक्ति की विचार शक्ति, ज्ञान और आत्म संयम के माध्यम से होता है। इसके लिए व्यक्ति हमेशा प्रयास करता है और अपने आप को संयमित रखता है। वे दृढ़ता से अपने मन का नियंत्रण करता है। यह होता है चारित्रिक दृढ़ता, जो हम सभी के जीवन में जरूरी है। एक और गीत मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है जीवन एक संघर्ष। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बिल्कुल श्रोताओं, जीवन एक संघर्ष है। सुख भी है, दुख भी है, हार भी है, जीत भी है। यह हमारे जीवन का पहलू है। इसी के साथ बात करते हैं आत्मसम्मान की। स्वयं के मूल्य, क्षमता और योग्यता की गहरी समझ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं और अपनी उपलब्धियों को किस तरह मूल्यांकन करते हैं। एक मजबूत आत्मसम्मान व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर, प्रेरित और खुशहाल बनाता है। अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए खुद से प्यार करना और खुद को किसी से कम न आंकना, ये आत्मसम्मान के पहलू हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना और चुनौतियों का डटकर सामना करना, अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए सही समय पर ना कहना सीखना और आत्मसम्मान से समझौता न करना, जीवन में इसका महत्व, ऊंचा आत्मसम्मान तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करता है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, जो लोग खुद का सम्मान करते हैं वे जीवन में स्पष्ट और सही निर्णय ले पाते हैं। जब आप अपना सम्मान करते हैं तो दूसरे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। और बात आती है आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं। खुद से अच्छी और सकारात्मक बातें करें। हर व्यक्ति अद्वितीय है। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। गलतियों से सीखें। असफलताओं को अपनी योग्यता का प्रमाण न माने, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझें। आत्मसम्मान के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उन्हें पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी तरह हम अपने जीवन में व्यवहारिक बातें लाकर अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। एक और गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, मुस्कान व्यक्ति का सबसे सहज और खूबसूरत श्रृंगार है, जो न केवल चेहरे की चमक बढ़ाती है बल्कि आत्मविश्वास को भी निखारती है। ये खुशी, सकारात्मकता और आंतरिक शांति की पहचान है, जो तनाव कम करने, संबंध मजबूत करने और लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। एक मुस्कान आत्मविश्वास दर्शाती है और सामाजिक व्यवसायिक रिश्तों को बेहतर बनाती है। मुस्कुराने से हमारे एंडोफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन निकलते हैं, जो खुशी का एहसास कराते हैं और हमारा तनाव भी कम करते हैं। मुस्कुराने वाले लोग अधिक आकर्षक दिखते हैं। मुस्कुराना रक्तचाप कम करने और हृदय स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। यह न केवल आपका मूड बदलती है बल्कि दूसरों के मन में भी सकारात्मक भावनाएं जगाती है। मुस्कुराने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, यह बिना पैसे से मिलने वाला कीमती आभूषण है, जो चेहरे की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। यह होता है व्यक्ति का श्रृंगार, मुस्कान। एक और गीत कार्यक्रम के आखिर में। खून भरी मांग से आवाजें हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम की।

बिल्कुल श्रोताओं, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, जीवन यूं ही चलता रहेगा। और इसी तरह के फिल्मी गीत हम आपको सुनवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी सूरतगढ़ के साथ। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजना चाहते हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान

0: किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में

0: से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
0: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई।

0: हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats.

0: हिजा हुए, जिनमें भारत, ब्राज़ील, चीन, केनिया, जुनूबी कोरिया जैसे G7 ममालिक और बैन अक्वामी मालियाती फंड के रहनुमा शामिल हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सैमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताज़ा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सैमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में खातिरख्वाह तेज़ी आई है। कानों की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम कान ब्लॉकों को 7वें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है, जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। नीलामी की यह शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमेरिका के महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक अबूरी तिजारती माहदे की तकमील करना है, जब तिजारती शराकत दारों से दरामद किए जाने वाले सामान पर अमेरिका के आर्जी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को ख़त्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमरीकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तजारती कानून की 122वीं शिक के तहत 150 दिन के लिए 10% आर्जी महसूल लागू करना पड़ा था। ये सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था, जो 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। दोतरफा तजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमेरिका में ज़्यादातर भारतीय अशिया पर दोतरफा तजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को ख़त्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और ज़रई अशिया पर महसूलात में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज़ पेश की है। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका दो तरफा तिजारती माहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पुरउम्मीद हैं। इस दौरान जनाब गोर ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती माहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इकतसादी मौके पैदा होंगे और ख़ास तौर पर अमरीका भारत इकतसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस माहदे के सबब अबनाए हुरमुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिलोनिया के शहर मेकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू ज़ैबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और अमेरिका के नायब सदर जेडी वेन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समंदर से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम IMO ने उन 11,000 से ज्यादा

0: जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो आबनाए हुरमुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल अर्सेनियो डोमिगेज ने एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाज रानी की तौसीख शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। तमिलनाडु की हुकूमत ने वेट्री तमजीगम विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। इस दस्तावेज की अहम पहल मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर खानदानों के नौजायदा बच्चों को 1 ग्राम सोने की रिंग पेश की जाएगी, बशर्ते कि बच्चे की पैदाइश सरकारी अस्पताल में हुई हो। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रो के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप एल में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने IAS 2026 बैच के अफसरान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि मजबूत अज़्म और अवाम की फलाह व बहबूद पर मबनी विकसित भारत 2047 की क़्यादत करें। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के बाद आबनाए हुरमुज में जहाज़ों की आमद और रफ्त बहाल, भारतीय परचम बरदार जहाज अपनी अपनी मुकर्रा बंदरगाहों के लिए रवाना। इसी अखबार की एक और खबर है कि दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों की एक आला सतही मीटिंग में दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत कई अहम मामले पर नतीजा खेज बातचीत हुई। हुकूमत एलनिनो की वजह से मानसून के असरात से निमटने और किसानों की पेशगी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को अखबारों ने खसूसियत के साथ शाया किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का किया ऐलान। उम्मीदवार सरकारी CUET पोर्टल के जरिए स्कोर कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायजनी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमेरिका ने मुजवजा 2 तरफा तजारती माहिदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोतों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत भजनों पर। आज के हमारे कलाकार हैं पामेला जैन, उनके साथी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार थी पामेला जैन और उनके साथी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: सवेरे के 9 बज रहे हैं, ठीक 9 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़

0: करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया, कहा ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा, आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स समूह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी सदस्य देशों के बीच अधिक एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब समय केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि भारतीय उत्पादों और ब्रांडों को वैश्विक पहचान दिलाने का है। कल नई दिल्ली में वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत की गुणवत्ता, नवाचार और क्षमता को दुनिया के हर बाजार तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। श्री सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न राज्य और वस्त्र क्षेत्र के सभी धारक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले सालों में ये गति और तेज होगी। केंद्र, राज्य, जिले और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से उत्पादन, निर्यात और मूल्य संवर्धन के नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे।
1: सिल्क बोर्ड 26,000 मैट्रिक टन पर 2014 में प्रोडक्शन साइज था, अभी 42,000 से ज्यादा है। आने वाले दिन में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। फैब्रिकेटर से भी कहूंगा, एक लाइन तुम अपने ब्रांड का भले उस नाम से नहीं लेकिन दूसरे नाम से एक्सपोर्ट करना शुरू करें, जिससे इंडिया का ब्रांडिंग भी हो।
0: वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात को 37 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सम्मेलन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से इसका शुभारंभ करेंगे। पशुपालन विभाग ने बताया कि ये वायरस मक्खी, मच्छर और किलनियों के जरिए फैलता है। विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-2023 में इस बीमारी के कारण राज्य में लगभग 76,000 गौवंश प्रभावित हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भाकरोटा में नए ट्रोमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जेडीए, नगर निगम, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यों को गति देने के लिए अत्याधुनिक सुपर सकर और मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व देने के लिए स्वामित्व कार्ड भी बांटे जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर

0: भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को भ्रामक और निराधार बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और सरकार इसकी लगातार निगरानी रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रण वाले E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिलाने या ईंधन टैंक के पास जमा होने के वीडियो पूरी तरह से झूठे हैं। E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन का बीमा खत्म होने का दावा भी गलत पाया गया है। सरकार के अनुसार अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में यह व्यवस्था पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है। इस कार्यक्रम से देश में कच्चे तेल की आयात में कमी आई है और 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सीकर, झुंझुनू, करौली, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए विभाग ने विशेष एडवाइजर जारी की है। किसानों से खेतों और मंडियों में खुले में रखी पकी हुई फसलों और अनाज को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखने की अपील की गई है। रेलवे ने यात्री अनुशासन को मजबूत करने और यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। रेलवे बोर्ड आदेश के अनुसार 20 जून से देशभर में तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। जयपुर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में खतरनाक और प्रतिबंधित सामान ले जाने के मामलों में भी सख्ती बढ़ाई गई है। पटाखे, गैस सिलेंडर या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में आरोपी को जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा किए जाने पर पूरी यात्रा का किराया और कम से कम 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम चरण के साक्षात्कार 2 और 3 जुलाई को होंगे। सहायक आचार्य इतिहास और पुस्तकालय अध्यक्ष के साक्षात्कार 6 से 17 जुलाई तक चलेंगे। सहायक आचार्य संस्कृत के लिए 6 से 16 जुलाई और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के अंतिम चरण के इंटरव्यू 6 से 10 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न सुपर स्पेशलिटी के लिए सहायक आचार्य के साक्षात्कार 10 जुलाई को होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1,538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया, कहा ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, DRM चैनल के 909 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। श्रोताओं, आइए सुने राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार हैं दिलीप जोड़ा।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मरुमंगल, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉर्डन सिटी चैनल से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार थे दिलीप जोड़ा और उनके साथी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी कुंदन कटारिया का प्रोग्राम का पहला गीत इस बात के साथ। सफर सहना है पर तू साथ है, सफर सहना है पर तू साथ है, हर मुश्किल आसान है तेरे हाथ है, तेरे प्यार ने सजाई है दुनिया, तेरे प्यार ने सजाई है दुनिया, तू ही मेरे दिल की राहत है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म बाजी से। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए अगला गीत आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म जुदाई से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। अगला गीत अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ में, फिल्म प्रेम ग्रंथ से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोतों लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर को। फिल्म का नाम है मीरा का मोहन। इस गीत को लिखा है इंदीवर ने और संगीतकार अरुण पौडवाल।

ऐसी प्रीत हुई तुझसे कि मन मेरे उपवन बसता है। ऐसी प्रीत हुई तुझसे कि मन मेरे उपवन बसता है। पोर पोर जो महके जूही, सांस सांस चंदन रचता है। तुझसे मन के तार जुड़े जो, ये जीवन सरगम लगता है। तुझसे मन के तार जुड़े जो, ये जीवन सरगम लगता है। तेरी प्रीत में बन गई राधा, तू मेरा मोहन लगता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत पर ही आधारित कार्यक्रम सुहाना सफर।

सुहाना सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने हर दिल अजीत साथी कुंदन कटारिया का। मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं। मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं। मुश्किल तो यह है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोतों, लीजिए सुनिए किशोर कुमार और अलका याग्निक को फिल्म कामचोर से। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतकार राजेश रोशन।

श्रोतों लीजिए सुनिए फिल्म जानी दुश्मन से लता मंगेशकर को। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, आइए सुने अलका याग्निक और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है मृत्युदंड। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतकार आनंद मिलिंद।

श्रोतोली जी सुनिए अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी को फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। लीजिए अगला गीत अलका याग्निक, उदित नारायण और उनके साथियों को, फिल्म परदेश से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार नदीम श्रवण।

श्रोतों लीजिए सुनिए फिल्म लावारिस में अमिताभ बच्चन को। इस गीत को लिखा है साहिर ने और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: पर जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है मेरे यंग नेम हाँ मेरे यंग नेम हाँ मेरे यंग
1: नेम। लीजिए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पुकार का ये गीत। आवाजें हैं आरडी बर्मन और अमिताभ बच्चन की।
2: माइके माइके मत जाइयो। ए टोनी फर्नांडिस बेबी

श्रोताओं, आइए प्रोग्राम के आखिर में मोहम्मद रफ़ी आर डी बर्मन को सुनते हैं फिल्म शान से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार आर डी बर्मन।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सुहाना सफर से अपने हर दिल अजीज साथी कुंदन कटारिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोतों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सुहाना सफर से अपने हर दिल अजीज साथी कुंदन कटारिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओ, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुहाना सफर। सुहाना सफर के इस कार्यक्रम में लीजिए आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का ये गीत।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सैनिकों के लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। कार्यक्रम में लीजिए शुरुआत करते हैं बॉर्डर फिल्म के इस गीत के साथ।

0: एवं जन
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: सैनिकों के लिए इस कार्यक्रम में अब सुने रिफ्यूजी फिल्म का ये गीत, स्वर उदित नारायण के।
7: जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
8: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
7: तो चांद को ही देखिए ना।
8: मगर वो सांस नहीं लेता।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: श्रोताओ, इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में यह नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म गुलाम से।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान

0: हमारी पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोता कार्यक्रम में लीजिए अब सुने उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज में ये नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म गुप्त से। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत वीजू शाह का।

श्रोताओं, सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने सौदागर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सुनेंगे हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का वक्त रहेगा दोपहर 12:30, खेत खलिहान आप सुनेंगे दोपहर 12:50 पर। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर।

हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। सराइकी का वक्त रहेगा शाम 6:05। चौपाला आप सुना करते हैं शाम 7 बजे। 7:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। हेलो मन भावन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ है। श्रोताओ लीजिए अब सुने कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राम लखन फिल्म का ये गीत। ये एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिंदी एक्शन मसाला फिल्म थी और निर्देशित किया था इस फिल्म को सुभाष घई ने। इस फिल्म में मुख्य कलाकारों के रूप में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, डिंपल कपाड़िया, राखी और अमरीश पुरी मुख्य भूमिकाओं में थे। यह दो अलग अलग स्वभाव वाले भाइयों और उनके पिता का बदला लेने की एक कहानी है, जिसमें मुख्य रूप से जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर नजर आए थे इस फिल्म में। और इस फिल्म के जो गीत थे बहुत ही शानदार थे, इन गीतों को सराहा गया और ये गीत आज भी खूब सुने जाते हैं। तो लीजिए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। लीजिए, इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है। इस फिल्म का ये गीत, यह फिल्म 1998 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर और आइकॉनिक रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में से एक है। करण जौहर ने इस फिल्म से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। यह फिल्म मुख्य रूप से दोस्ती और प्यार के त्रिकोण पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से जो कलाकार जिन्होंने इसमें अपना अभिनय किया, शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान और सना सईद ने इसमें मुख्य रूप से काम किया। इसके संगीत को आज भी सराहा।

श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का ये गीत। यह फिल्म 1995 की एक प्रतिष्ठित भारतीय रोमांटिक फिल्म है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म भारतीय सिनेमा का इतिहास में सबसे लंबे समय तक सिनेमा घरों में चलने वाली फिल्मों में से एक है। इसके संगीतकार जतिन ललित हैं और इसके गीत सभी शानदार और खूबसूरत तरीके से इस प्रकार से पिरोए गए हैं कि लोगों को आज भी ये गीत बड़े पसंद आते हैं। तो लीजिए आप भी सुने इस फिल्म का ये गीत।

कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुने दिल फिल्म का ये गीत। ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई एक बेहद लोकप्रिय बॉलीवुड रोमांटिक एक्शन फिल्म है। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आमिर खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म अपनी प्रेम कहानी, शानदार गानों और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता के लिए जानी जाती है। इसमें मुख्य कलाकार आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, सईद जाफरी और देव वर्मा थे।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30:22 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें।

श्रोताओं, आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, लीजिए अब सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है बागवानी में समसामयिक कार्य।
1: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, बात करें खेती पाती की, तो अपना किसान भाई जी का है अनाज वाली फसलों के सागे सागे साग सब्जियां और बाग बगीचा भी अपन लगा रखे हैं। तो किसान भाइयों, बात करें अपना जिका बाग बगीचा है बा में आं दिना में करने वाला काम धंधा की, तो बागों की बात करें किसान भाइयों, तो अपने किसान भाइयों जी नींबू वर्गिया पौधा है, बेरिया है, आंवला है और अंगूर का भी बाग कई कई कटे कटे किसान भाइयों जी का लगा रखे है। तो आन दिन में आप देखा किसान भाइयों, मुख्य रूप से अगर आप बात करें तो बेरगा जी का अपना पौधा है, तो बेरड़ी के ऊपर आप देखा कि कई भांत का रोग है या कीट है बंगो प्रकोप अपन देखने ने मिला है। तो बात करें आप बेरगा जी का रोग और कीट है, तो पहली आप फल माखी की बात करें, देखो फल माखी जिकी है आ सारों ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वालों कीट है। और अपने फल जिका होवे बेरगा वे हरिया होवे और छोटा होवे भी टेम ही इन कीट को जिको है प्रकोप शुरू हो जाए। और शुरुआत में आप देखा कि एक लट हुए इन्हें अंग्रेजी नाम इंग हुआ मैगट, तो इंगो प्रकोप सारा ज़्यादा हुआ है। और जिका छोटा फल हुआ बीच हूँ इंग प्रभाव छूँ भी इंगा खाने छूँ या काना हो जाए बिल्कुल, और अंदर जिकी गुठली हुआ जिके बीज आप बोला तो बिंग आस पास इन्हें बिल्कुल खा गए और बिल्कुल एकदम ही जिको है ना थोथो कर दे। इसूँ किया फिर अपने फल जिको हुआ बिंगो आकार भी छोटो हो जाए और काना होने छूँ पर बिंगो बाद में बोने बेचनो भी औखो हो जाए और भाव भी जिको पूरा मिले को नहीं, तो इन करके इनको नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। और किसान भाइयों, आज की लट है आ बेर ने अच्छी तरह खा गए और भी बाद में माटी के मई लुक गए और रिवे और थोड़ा दिन बाद में फिर वह माखी के रूप में दोबारा बन गए और माखी के रूप में फिर वह दोबारा फिर पौधा ऊपर बिंगो जो है प्रकोप शुरू हो जाए। तो जिस देखो आ लट जिकी है दो बार नुकसान पहुँचावे, तो सारा ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली जिकी लट है, तो इनकी रोकथाम करनी बहुत ही अपन जरूरी है। तो इनकी रोकथाम की बात करें किसान भाइयों, तो इनकी रोकथाम खातर अपन है एक तो आपने जिका बाग बगीचा में जिका पेड़ पौधा है तो बंग आस पास है जिकी कोई जंगली झाड़ियां हैं घास फूस है बने हटा दें और खेत जिको है बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रखा, बिल्कुल भी कोई कांटा है घास है झाड़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए। और इस जिका प्रभावित जिका फल है जिका भी बेरिया काना हो गया है बने तोड़ गए और आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। और सागे सागे ई महीने का माँ आ दिन का माँ डाक दर्जी बतावे है कि माटी पलटन वालों जो को हल है बीच में अच्छी तरह माटी जरूर आप पलट दें, तो जिकी लटा माटी के मां लुकेड़ी है वह भी अच्छी तरह खत्म हो जानी चाहिए। और इंगे सागे सागे जदि फल लागन लागे तो बी टेमी मोनोक्रोटोफास जिकी है 36 SL इंगो घोल बना गए और इंगो अपने छिड़काव जरूर करना चाहिए। और इस अलावा जहाँ फास्फोमिडान है 85 SL है तो आधो मिली लीटर या फिर डाई मिठोत जिकी है 30 cc 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के और आप छिड़काव कर दें। और किसान भाई आप कई बार छिड़काव आप कर दें हाँ और भी बाद में क्या रोकथाम भी हो जाए पर फिर भी थोड़ी बहुत कण कसर रही जाए तो वह लट्टा जिकी है वह दोबारा फिर बितना ही अंडा देगी और दोबारा फिर तैयार हो जाए। तो इं करके आपने 15-20 दिन बाद में या फिर जिया भी आवश्यकता हो तो एक छिड़काव दोबारा करना चाहिए, तो जी सुख रोकथाम पूरी तरह हो जाए तो भी बाद में फिर वे लटा जिकी है बंग में अंडा बने को नहीं और वे खत्म हो जाए तो भी वो प्रकोप जो है बिल्कुल अच्छी तरह खत्म हो जाए। तो इनको आप विशेष ध्यान रखा इस बात को। चैफर बीटल की बात करें किसान भाइयों, तो अभी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचावे है और आ दिना में इंगो प्रकोप बहुत घनो होवे, जून और जुलाई के महीने में सहसू ज़्यादा प्रकोप इंगो ही होवे। और इंग खास बात है कि अपना जिका पौधा हुआ बंगी जिकी नुई पत्ता जिका एडा हुआ बने खा गए और बिल्कुल खत्म कर

और जी बिरखा शुरू हुए बी टाइम तो इमो प्रकोप बहुत घणो हुए। तो आप देख नहीं लाग रहे हैं कि बिरखा घटा घटा होने लाग रही है, और आगे आने वाले दिना में बिरखा के दिना है तो बी ऋतु में इंगो प्रकोप ज़्यादा हुआ है। तो इंगो भी अपना विशेष रूप से ध्यान रखा, और जी इंगा लक्षण दिखाई देवे और जठे भी वो कीट अपन दिखाई देवे, पत्ता खैड़ा पत्ता अपन दिखे, तो बी टाइम ही अपन इंगो नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो इन खातर भी मोनोक्रोटोफास 36 SL 1 मिलीलीटर या फिर कार्बोरिल जी की है 50 WP 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के, और जिका पेड़ है अपना बंग ऊपर अच्छी तरह छिड़काव कर दें, और छिड़काव जी को है चारों पासों अपन अच्छी तरह और दूर तई ऊपर तई अपन करना चाहिए। बेरगा आप देखा कि कई जगह पेड़ है किसान भाइयों का खूब लंबा चौड़ा और ऊंचा है, तो बंगी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण कई बार आप देखा कि ऊपर वाला हिस्सा पर छिड़काव रह जाए, तो बिंगो आप ध्यान रखा तो ऊपर वाली पत्तियां तक आप अच्छी तरह माने छिड़काव आप बिंगो पर जरूर कर दें, तो जिसों की कीट को जिको प्रकोप है खत्म हो जाए। सागे सागे किसान भाइयों छाल बक्षक कीट है, तो वो भी जिको पेड़ की छाल है अभी न खागे और तने का माँ लुक जाए, तो इंगो भी अपन विशेष रूप से अपन ध्यान रखना चाहिए। और वो खाणु बाद में क्या बेटा सुरंग बन जाए और जिकी डाली ना खावे बा बिल्कुल कमजोर हो जाए, कई की डालियाँ तो बिल्कुल सूख गए और टूट ही जाए। तो इंगे नियंत्रण खातर भी जिकी शाखा खराब हो रही है बाने आप काट गए और बाने बाड़ दें या फिर कटे दूर जाके नष्ट कर दें, और इंगे सागे सागे इंगो भी अपन के छिड़काव जी को है रासायनिक छिड़काव कर गए इंगो, और इंगो भी अपन ने रोकथाम जी की बात जरूर करनी चाहिए, नहीं तो आपने किया पौधा ही पूरा पूरा कई बार तो आप देखा प्रकोप इतना हुआ कि पूरा पूरा पौधा जी का है वह भी खराब हो जाए। तो किसान भाइयों इतने ही आप व्याधियों की बात करें तो जड़ गलन रोग है इनको भी विशेष रूप से आपने रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि इंगे प्रकोप से पौधा आप देखा कि बिल्कुल सूख जाए। तो इंगे नियंत्रण खातर आपने कैप्टन या थायराम जी को है 2 किलोग्राम सो आपने बीज जी को उपचारित करना चाहिए, क्योंकि अब आप आगे नर्सरी में भी आप पौधा लगावांगा तो बी खातर इंगो आपने विशेष रूप से आपने शुरू से ही ध्यान रखना है। तो 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप बीज जी को उपचारित करके और बी बाद में नर्सरी में आप पौधा लगावा, तो जिस आगे अपना पौधा जब आप खेत में लगावा भी पेड़ बन जाए तो बंग मई रोग को प्रकोप ना होवे। और इन सागे सागे पत्ती धब्बा या झुलसा रोग भी अपन देखने ने मिला है भी, तो देखो किसान भाइयों वो रोग जिको है आगे आने वाला 1-2 महीना बाद में इनका लक्षण ज़्यादा दिखाई देवे, पर कई कई पौधा है या कई कई किस्म ऐसी है जिका मांग में बहुत जल्दी इनका लक्षण दिखाई देने लग जाए, पर इनका जे लक्षण आपने दिखाई देवे तो आ एक देखो एक भांत गया फफूंदी हुआ है, तो इनको भी आपने रोकथाम अपन करनी चाहिए। और इनका लक्षण ये है कि इनका भूरा रंगा जिका धब्बा बनने लाग जाए और बाद में आंगो जिको आकार भी ज़्यादा हो जाए, धीरे धीरे पूरी पत्ती के ऊपर फैल जाए और पत्तियाँ जिकी है सूख गए और नीचे गिरने लाग जाए, और पत्ती अपन यहाँ लागण लाग जाए जी आप कई बार देखा कि आग लागड़ी हो तो पत्तियाँ जी झुलस जाए नहीं, तो इन करके इनको नाम भी झुलसा रोग ही है। तो इनका नियंत्रण खातर आपने मेन को जेब 3 ग्राम इनको घोल बना के 1 लीटर पानी का माँ, और इंगो अपन छिड़काव दूँ 3 बारी अपन 15 या 20 दिनांग अंतर से अपने करना चाहिए। किसान भाइयों के सागे सागे आप बात करें अपना जिका नींबू वर्गीय पौधा है, तो बंग माम यहाँ दिना में अपन देखा कि परण खनक है या फिर सिट्रसिलो जिको है ए जिका कीट है अंगो प्रकोप अपने देखने ने मिला है, और यह कीट भी खेत गए में अपने बहुत ज़्यादा पौधा ऊपर नुकसान करे है। अंगी रोकथाम खतरा अपने एसी फेड जिकी है 75 SP बिंगो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का माँ या फिर मिथाइल डिमेटान जी की या 25 CC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर्शन घोल बना के और अपन छिड़काव कर देना चाहिए, तो इसमें ए जिका कीट है अंगी रोकथाम अपन कर सका। हाँ, और जी अभी आप बात करी कि अपने जिको छिड़काव है वो 15-20 दिन बाद में अपन कर देना चाहिए, जिसमें माड़ी मोटी कोई कारण कसर रेडी हुआ है तो बाद दूसरे छिड़काव में पूरी हो जाए। और छायादार और जिका दूसरा शोभाकारी वृक्ष है बने लगाने खातर जी आप फलदार पौधा लगावा, तो बंग इतने ही आंगो आप खेत गए मान नाप तोल करके पूरा अच्छी तरह और खाडा जी का बंग खुदाई कर लें, क्योंकि सारा अच्छा टाइम है आगे बिरखा को टाइम है, तो इसको पहले ही आप खाडा खोद के और आपने तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाई सागे सागे नींबू के माँ कैंकर रोग जो है बिंग बचाव खातर आपने बोर्डो मिश्रण या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवाई है बस 4-5 लीटर पानी का माँ घोल बना के और आपने 20-25 दिनांक अंतराल से आपने छिड़काव कर देना चाहिए। और सागे सागे बेरगा जी का पौधा है बंग माँ भी बिरखा आगा आने वाले दिनांग माँ शुरुआत के माँ ही आपने खाद और उर्वरक जी का जरूरत है भी आपने दे देना चाहिए, और इसमें क्या कि अपना जिका पौधा है बाकी बढ़वार अच्छी हो सी और जिका फल है बाकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे सी और पैदावार भी अच्छी हो। किसान भाई यो बात करें आप आंवला की, तो आंवला का माई बोरेक जिको है बिंग माँ जिंक सल्फेट जिको बिंगो घोल बना के और बिंगो छिड़काव आपने करना चाहिए। इस तरह ही अंगूर है, तो अंगूर के जल्दी पकाव खातर आपने और बिंगी मिठास ज़्यादा हुए।

0: पाने एथीफोन 50 मिलीलीटर रिंग्स आ गया बोरिक्स 100 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बना के और 15 दिन से छिड़काव कर दें और पानी जगह टेमो टेम लगा दें। तो अब चला, राम राम सा, राम राम।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने को है। लीजिए अब सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में अधिकारियों के साथ पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में अधिकारियों ने रिफाइनरी से उत्पादित विभिन्न पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के नमूने प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करती ये महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय लिखेगी। साथ ही पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, केमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर राजस्थान को विनिर्माण और औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सांगानेर के त्रिपोलिया हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1500 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भाकरोटा में नए ट्रोमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं जेडीए नगर निगम स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से करेंगे। पशुपालन विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से लोगों की यात्रा आसान हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। बूंदी शहर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत गढ़ पैलेस में शहनाई वादन से हुई। इसके बाद गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। इस अवसर पर पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय स्तर के चित्रकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। संग्रहालय सहायक जगदीश वर्मा ने बताया कि बूंदी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रानी जी की बावड़ी, सुखमहल और 84 खंभों की छतरी पर पर्यटनों और आमजन का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदीवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने बूंदी को राजस्थान की अतुल्य सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गौरव का अनूठा प्रतीक बताया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह

0: की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थी और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी क्षेत्रों में तेज गर्मी और उमस का असर बरकरार है। राजधानी जयपुर में आज सुबह कई जगह हल्की बरसात हुई। भरतपुर में भी सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 और 22 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम महिला जगत।

मुस्कुराकर हर गम को छुपाना आ गया, मुस्कुराकर हर गम को छुपाना आ गया, जिंदगी की धूप में छांव बन जाना आ गया, जिंदगी की धूप में छांव बन जाना आ गया। वो जो समझती थी खुद को कभी मजबूर, वो जो समझती थी खुद को कभी मजबूर, आज उन हवाओं को भी उनका रुख बदलना आ गया। नमस्कार बहनों, आकाशवाणी के इस बेहद खास और खूबसूरत मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी सखी सुनीता शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। और आज हम चर्चा करेंगे बहनों महिला जगत में जिंदगी की सांझ बेला में बेटा बेटी, अच्छा संगीत, मानसिक आराम, नेचुरल मेकअप रिमूवर और किचन टिप्स पे। तो बात करते हैं जिंदगी की सांझ बेला में बेटा और बेटी। बहनों, जीवन की सुबह जितनी ऊर्जावान होती है उतनी ही संघर्षमयी, लेकिन इन सब के बाद आती है सांझ बेला। जीवन की यह शाम ढलते हुए सूरज की उस लाली की तरह है जिसमें सुकून भी है, अकेलापन भी है और जिंदगी भर का तजुर्बा भी है। इस सांझ बेला में जब हाथ कांपने लगते हैं और आंखें धुंधलाने लगती हैं, तब हर माता पिता के दिल के आंगन में दो ही नाम गूंजते हैं, बेटा और बेटी। बहनों, आज इस जिंदगी के उस मोड पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सांझ बेला कहते हैं। अक्सर लोग ढलते सूरज को देखकर एक उदासी से घिर जाते हैं, लेकिन क्या सचमुच सांझ उदास होती है? बिल्कुल नहीं। सांझ तो वह खूबसूरत वक्त है बहनों, जो दिन भर की दौड़ धूप के बाद हमें ठहरना, संभलना और खुद से मिलना सिखाती है। कहते हैं ना, थककर चूर हुई रस्मियाँ जब अस्ताचल को जाती है, सोने जैसी सुनहरी यादें आंगन में बिखरा जाती हैं। जीवन के इस पड़ाव पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो खट्टी मीठी यादों का एक पूरा कारवां नज़र आता है। बच्चों की किलकारियाँ, युवाओं का संघर्ष, जिम्मेदारी को निभाने की वो जदोजहद, और अब यह शांत और एकांत है। यह बेला खोने की नहीं बल्कि जीवन भर कमाए अनुभवों को सहेजने और उन्हें अगली पीढ़ी तक सौंपने की है। बहनों, आज का समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है। एक दौर था जब माना जाता था कि बुढ़ापे की लाठी सिर्फ बेटा ही बन सकता है, लेकिन आज की सांझ बेला में यह परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। आज बेटा और बेटी जीवन के दो ऐसे किनारे बन चुके हैं जो ढलती उम्र की कश्ती को सहारा देते हैं। कहते हैं ना, बेटा अगर दिल का टुकड़ा है तो बेटी उस दिल की धड़कन है।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बहनों, हम बात कर रहे थे जिंदगी की सांझ बेला में बेटा बेटी की। कहते हैं ना, बेटी अगर दिल का टुकड़ा है, बेटा अगर दिल का टुकड़ा है तो बेटी उस दिल की धड़कन है। बिल्कुल सहन बहनों, जब जीवन के इस पड़ाव पर अकेलापन महसूस होता है, घेरता है या महसूस होता है, तब बेटा एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहता है, खड़ा दिखाई देता है। वह परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेता है, पिता के अधूरे कामों को पूरा करता है और समाज में माता पिता के नाम को जीवित रखता है। वह सुरक्षा का वो एहसास है जो बूढ़ी आँखों को यह भरोसा दिलाता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। लेकिन इसी सांझ बेला में बेटी का रूप एक अलग ही सुकून देता है। भले ही बेटी ब्याह कर दूसरे घर चली जाती है, लेकिन उसका मन हमेशा अपनी मायके की चौखट पर घूमा करता है। दूर रहकर भी, बाबूजी आज आपने दवाई समय पर ली, या आज आपकी आवाज़ कुछ ढीली लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना, ये पूछने वाली सिर्फ एक बेटी ही हो सकती है। बहनों, बेटा अगर घर की नींव संभालता है तो बेटियां उस बूढ़े होते घर की दीवारों में ममता का रंग भरती है। बेटा अगर कर्तव्य है तो बेटियां आत्मिक संवेदना है। और ये सच तो यह है कि बुढ़ापे की इस ढलती शाम में माता पिता को जितनी मजबूत कंधों की ज़रूरत होती है, उतनी ही एक सहलाने वाले स्पर्श और मीठे बोल की भी ज़रूरत होती है। और यह

संतुलन बेटा और बेटी दोनों मिलकर पूरा करते हैं। बहनों, आज समय आ गया है कि हम बेटा और बेटी के बीच उस बारीक फर्क को हमेशा के लिए मिटा दें जो कभी हमारी समाज की सोच में था। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर माता पिता को किसी वंश चलाने वाले की उतनी चाह नहीं होती जितनी साथ निभाने वाले की होती है। और इस मोर्चे पर आज हमारी बेटियां भी बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि कई बार तो उनसे दो कदम आगे बढ़ाकर माता पिता की सेवा कर रही हैं। यदि आज आपकी ज़िंदगी भी कोई सांझ बेला है तो अपने बेटा बेटी के प्यार में फ़र्क मत कीजिए। दोनों आपकी ही बगिया के दो अनमोल फूल हैं। एक अगर छाया देता है तो दूसरी उस साए में खुशबू बिखेरती है। बहनों, जिंदगी की सांझ बेला में माता पिता को किसी धन दौलत की चाहत नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपनों के साथ सम्मान और दो मीठे बोल की ज़रूरत होती है। इस दौर में बेटा बेटी मिलकर यदि माता पिता को मानसिक सुकून और सम्मान दे तो ढलती उम्र का सफ़र भी बेहद खूबसूरत और गरिमामय बन जाता है। बेटा अगर जिंदगी की धूप में मजबूत छत बनता है बेटा अगर जिंदगी की धूप में मजबूत छत बनता है तो बेटी उस ढलती सांझ में सुकून की ठंडी छांव होती है। उम्र के इस मोड़ पर आकर ये जाना हमने बेटा अगर आंगन का चिराग है तो बेटी भी उसकी लौ होती है।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बहनों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है और हर शाम थक कर चूर हो जाती है, वहां एक चीज ऐसी होती है जो बिना कुछ कहे हमारे दिल को छू लेती है, और वो है संगीत। कहते हैं कि शब्द जहां थक जाते हैं, वहां से संगीत अपनी यात्रा शुरू करता है। जब मन अशांत हो, विचारों का ट्रैफिक थमा ना हो, तब किसी कोने से आती एक सुरीली धुन, जैसे बहती नदी के ठंडे पानी की तरह, हमारे जहन को छूकर गुजरती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अच्छा संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बेहतरीन थेरेपी है। जब हम अपनी पसंद का धीमा और मधुर संगीत सुनते हैं, तो हमारे शरीर में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसी हैप्पी हार्मोन्स का रिसाव होता है, और यह हमारे तनाव को कम करता है, दिल की धड़कनों को एक सुकून भरी लय देता है, और दिमाग को गहराई से शांत करता है। हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की तो बात ही निराली है। राग यमन की कोमलता हो या राग भैरवी की शांति, हर राग का हमारे मूड पर एक गहरा असर होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही सुने, चाहे वो पुराने जमाने के सदाबहार नगमे हो, सूफी संगीत हो, या फिर प्रकृति की आवाज़ें जैसे बारिश की बूंदें या चिड़ियों का चहकना, जो भी आपके दिल को भाए, वही आपके लिए सबसे अच्छा संगीत है। और यही वजह है बहनों कि संगीत को हमारे यहाँ साधना कहा गया है। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहाँ हमारे पास बात करने के लिए हजारों लोग हैं, लेकिन खुद को सुनने के लिए वक्त नहीं है, वही संगीत हमारे सबसे अच्छा साथी बनता है। अक्सर जब हम रात को सोने जाते हैं, तो दिन भर की बातें और चिंताएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। ऐसे में यदि आप सोने से ठीक 15 मिनट पहले कोई धीमा बिना शब्दों वाला संगीत, जैसे कि बांसुरी या संतूर की धुन सुने, तो यह आपके मस्तिष्क की तरंगों को शांत करता है। यह अनिद्रा जैसी समस्या के लिए किसी जादुई दवा से कम नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप काम कर रहे हो और ध्यान भटक रहा हो, तब बैकग्राउंड में बजता हुआ हल्का संगीत आपकी एकाग्रता को बढ़ा देता है। संगीत हमारे

हमारे भीतर दबे हुए गुब्बारे जैसे तनाव को धीरे से बाहर निकाल देता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। तो क्यों ना आज दिन भर की मसरूफियत से चंद लम्हे चुरा कर आँखें बंद करें और सुरों की इस मखमली चादर को खुद पर ओढ़ लें, अपने पसंदीदा गीतों को सुनें, गुनगुनाएं और महसूस करें कि कैसे सारा तनाव जो तनाव है वो धीरे धीरे हवा हो रहा है। चलते चलते किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के साज पर कुछ सुर सजाना लाजमी है, जिंदगी के साज पर कुछ सुर सजाना लाजमी है, थक गई हो रूह तो संगीत का बहाना लाजमी है।

कुदरत का रंग अपनाए बिना रसायनों के अपनी सुंदरता को निखारे। सादगी में ही असली नूर है, कृत्रिमता से हर कोई दूर है। बिल्कुल बहनों, आज के इस दौर में खूबसूरत और सलीके से पेश आना हम सभी को पसंद है, चाहे वर्किंग वीमेन हो, कॉलेज जाने वाली युवा पीढ़ी हो या फिर हमारी गृहिणियाँ हो। किसी खास मौके पर हल्का फुल्का मेकअप करना अब हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा ही बन चुका है। लेकिन अक्सर हम सजने संवरने पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पर दिन ढलने के बाद उस सजावट को उतारने में थोड़ी लापरवाही भी कर जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि रात को बिना मेकअप हटाए सो जाना हमारी त्वचा के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? इससे त्वचा की रोग क्षेत्र यानी कि पोर्स पन जो है वो बंद हो जाते हैं, जिससे मुहासे, झुर्रियाँ और बेजान त्वचा जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अब आप कहेंगे कि बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त मेकअप रिमूवर को त्वचा को रूखा बना देते हैं या आँखों में जलन पैदा करते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं प्रकृति की गोद में और बात करते हैं कुछ ऐसे नेचुरल मेकअप रिमूवर्स की जो आपके किचन में ही मौजूद है और जिनके इस्तेमाल से आपकी त्वचा बिना किसी नुकसान के खुलकर सांस ले सकेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबके घरों में मिलने वाले नारियल तेल की। बहनों, अगर आपने वाटरप्रूफ मस्कारा या कोई ऐसी लिपस्टिक लगाई है जो आसानी से नहीं छूटती, तो नारियल तेल से बेहतर कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा नारियल तेल

तेलियों में ले, चेहरे पर हल्की सी मसाज करें, फिर गुनगुने पानी में भीगे हुए कॉटन पैड से इसे पोंछ लें। यह त्वचा को साफ करने के साथ साथ आपके अंदर से जो पोषण है वो भी उसको देता है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो आपके लिए कच्चा दूध एक वरदान है। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की मर्त कोशिकाओं को हटाता है और मेकअप को बहुत ही कोमलता से साफ करता है।

बहनों, हम बात कर रहे थे मेकअप रिमूवर की या मेकअप को रात में सोते टाइम हटाने की। तो मेकअप हटाने के लिए बेबी ऑयल को बेस्ट ऑयल माना जाता है। यह एक स्किन को सूट करता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी भी स्किन को कोई चीज़ सूट नहीं करती, लेकिन यह बेबी ऑयल है वो हर स्किन को सूट करता है और इससे मेकअप भी आराम से निकल जाता है। आप बेबी ऑयल या ऑलिव ऑयल को पूरे चेहरे पर मसाज करें और इसे एक गीले कॉटन से साफ करें। आप इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। फिर ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें।

धोने के बाद भी आप बेबी ऑयल को फिर से अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे आपका चेहरा है वो बेबी जैसा सॉफ्ट भी बन जाएगा। गुलाब जल का उपयोग भी काफ़ी समय पहले से ताजगी के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब ये एक टोनर का काम भी करता है। इससे आप मेकअप रिमूवर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक कंटेनर में गुलाब जल लें और 2 टीस्पून ग्लिसरीन मिलाएं। इस घोल को एक बोतल में डालकर फिर साफ पानी या साफ हाथ से इसे चेहरे पर लगाएं। फिर चेहरे की गोलाई से मसाज करें और गुनगुने पानी से इसे धो लें। यह भी मेकअप रिमूवर करने का बहुत ही अच्छा साधन है। अब हम बात करते हैं, एक कटोरी में थोड़ा सा ठंडा कच्चा दूध लें, उसमें रुई डुबोएं और पूरे चेहरे को साफ करें। यह मेकअप को हटाएगा ही और साथ ही आपकी त्वचा को एक नेचुरल टोनर का फ़ायदा भी देगा। और गर्मियों का ये मौसम है, तो गर्मियों के इस मौसम में तो त्वचा को ठंडक की भी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आप खीरे के रस में कुछ बूंदे जैतून के तेल की मिला सकते हैं। खीरे में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा की जलन को शांत करते हैं, और ऑलिव ऑयल त्वचा की नमी को बरकरार रखता है। यदि आपकी त्वचा ऑयली या मुहासों वाली है तो आप एलोवेरा जेल में आधा चम्मच शहद मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मिश्रण भी चेहरे की गंदगी और अतिरिक्त तेल को खींच निकालता है और चेहरे पर एक सौंधी सी चमक को छोड़ जाता है। तो बहनों, महंगे और केमिकल से भरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने के बजाय क्यों ना आज से ही इन प्राकृतिक उपायों को अपनाया जाए। जब प्रकृति ने हमें इतने बेहतरीन विकल्प दिए हैं, तो फिर अपनी त्वचा को रसायनों के हवाले क्यों करना, और इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम अपनी त्वचा को अच्छा बना सकते हैं।

बहनों, अब बात करते हैं किचन टिप्स की। किचन किसी भी घर का दिल होता है और यहीं से पूरे परिवार की सेहत और खुशियों का रास्ता तय होता है। एक सुव्यवस्थित, साफ सुथरा और स्मार्ट किचन ना केवल समय की बचत करता है, बल्कि खाना बनाने के अनुभव को भी आनंदमय बना देता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ आसान और स्मार्ट किचन टिप्स अपनाकर हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत कर सकते हैं। जैसे कि समय और ऊर्जा बचाने की टिप्स पर अगर हम बात करें, तो हमें खाना बनाने से पहले सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे कि सब्जियां पहले से ही काट ले, कटी हुई सब्जियां, मसाले, तेल एक जगह इकट्ठा करके रख दें। इससे होगा क्या कि खाना बनाते समय हड़बड़ी नहीं होगी और गैस की भी बचत होगी। बहनों, सब्जियों में लहसुन अदरक का पेस्ट जो होता है वो तो सभी डालते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या है, सप्ताह भर के लिए अदरक और लहसुन का पेस्ट एक साथ बनाकर उसमें थोड़ा सा नमक और तेल मिलाकर एयर टाइट कंटेनर में रख दें, तो ये ख़राब भी नहीं होगा और रोज़ रोज़ का समय भी बच जाएगा। क्योंकि आजकल घर और ऑफिस महिलाएं दोनों संभालती हैं, तो सुबह सुबह समय ही नहीं होता कि लहसुन को छीले, तो ये काम सबसे अच्छा है, इससे समय बचेगा। वैसे कुछ उबले हुए आलू भी फ्रिज में रख सकते हैं, इससे सुबह के समय बच्चों का टिफ़िन या अचानक आए मेहमानों के लिए स्नैक्स जैसे कि सैंडविच हो गए या परांठे हो गए तुरंत तैयार किए जा सकते हैं। भोजन का स्वाद और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी कुछ टिप्स पर बात करते हैं। जैसे कि मसालों को भूनना, खड़े मसालों का पहले हल्का सा तवे पर ड्राई रोस्ट यानी कि भून लेंगे, इससे मसालों की खुशबू और स्वाद जो है वो दोगुना हो जाता है। सब्जियों का रंग बरकरार रखने के लिए हरी सब्जियां जैसे कि पालक है, मटर है, उनको उबालते समय उसमें एक चुटकी चीनी मिला देंगे, इससे सब्जियों का जो प्राकृतिक हरा रंग है फीका नहीं पड़ेगा। बहनों, अगर ग्रेवी पतली हो गई हो तो उसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबला मेस किया हुआ आलू उसमें मिला देंगे, इससे वह ग्रेवी आपको पतली नहीं लगेगी और खाने लायक या खट्टी हो जाएगी।

बहनों, हम बात कर रहे थे किचन टिप्स के लिए। तो किचन में काम करते हुए हमें स्वच्छता और रख रखाव का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें खाना बनाते समय जो भी बर्तन खाली हो उन्हें तुरंत धो लेना चाहिए। साथ ही जो काउंटर टॉप है उसको भी कपड़े से साफ करते रहना चाहिए ताकि बाद में काम का बोझ ना बढ़े। चींटियाँ और कीड़ों से बचाव के लिए किचन के कोनों में या सिंक के पास थोड़ा सा नमक या सिरका है उसको छिड़कने से भी चींटियाँ और कॉकरोच नहीं आते। बहनों, तांबे या पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए इमली या नींबू के रस का थोड़ा सा नमक मिलाकर रगड़ने से बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कैसे रखें, इस पर बात करते हैं कि हरी मिर्च ज़्यादा आ जाती है। कई बार हम देखते हैं सब्जियों के साथ भी आ जाती है, अगर ज़्यादा काम में ना आए तो खराब हो जाती है। तो क्या करना है, हरी मिर्च को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए उनकी डंठल को तोड़कर उन्हें धोकर और सुखाकर एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं ताकि लंबे समय तक खराब ना हो। दालों में कीड़े पड़ जाते हैं तो दालों और चावल को कीड़ों से बचाने के लिए उनमें सूखी नीम की पत्तियाँ, तेज पत्ता या कुछ लौंग डालकर रखें। धनिया पत्ती, जो हरा धनिया होता है, उसे साफ करके एक साफ कपड़े या टिश्यू पेपर में लपेटकर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके फ्रीज में रखें। इससे हरा धनिया हफ्तों तक फ्रेश रहेगा। नींबू को किसी कांच के बर्तन में पानी भरकर उसमें डुबोकर फ्रिज में रखें। नींबू 1 महीने बिल्कुल रसीले और ताज़ा बने रहेंगे। सूजी में भी कीड़े पड़ जाते हैं तो सूजी के डिब्बों में भरने के लिए पहले हल्का सा कढ़ाई में भून लें। इससे कीड़े भी नहीं पड़ेंगे और जाले भी नहीं लगेंगे। बहनों, हम प्याज काटते हैं तो आंसू आ जाते हैं ना, तो इसके लिए प्याज को काटने से 10-15 मिनट पहले ठंडे पानी में डुबो कर रख दें या फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से प्याज काटते समय आंखों में पानी भी नहीं आएगा और जलन भी नहीं होगी। चावल तो हर घर में बनते ही हैं और सबको पसंद भी है, तो चावल को खिला खिला बनाने के लिए चावल उबालते समय पानी में 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और देसी घी डाल दें। इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल सफ़ेद व खिले खिले बनेंगे। रायते का स्वाद बढ़ाने के लिए रायता बनाते समय उसमें नमक तुरंत ना मिलाएं, बल्कि जब सर्व करो उस समय मिलाएं। इससे अलावा रायते में हींग और जीरे का छोंक लगाने से भी उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। परांठों को सॉफ्ट बनाने के लिए पूरी या परांठे का आटा गूंदते समय उसमें एक उबला हुआ आलू मैश करके मिला दें। पानी की जगह गुनगुने दूध से आटा गूंदे, परांठे बेहद मुलायम और खस्ता बनेंगे।

बहनों, उम्मीद करती हूँ आज आपसे जो मैंने जानकारी साझा की आपको पसंद आई होगी। अब समय को देखते हुए अपनी सखी सुनीता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र

0: की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से

0: यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले

0: ने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सलामी फिल्म के इस गीत के साथ। इसे स्वर दिया है कुमार शानू और आशा भोसले ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए अब सुने इंग्लिश बाबू देसी मैम, इस फिल्म का ये गीत स्वर अलका याग्निक और कुमार शानू के हैं।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने हस्ती फिल्म का ये गीत। स्वर साधना सरगम कुमार शानू और मुकुल अग्रवाल के हैं।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजने को हैं। लीजिए अब सुने उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया इन कार्यक्रमों की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। भारत ने अकौम

0: कड़ियल जवां मारा गया।
1: सोच पेश कर रही थी शाकिया खलीली और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। और लीजिए सुनिए मोहतरमा अमीर निगार रिजवी का तहरीर करदा फीचर, हकीकत अबदी है मकामी शब्बीरी।

0: बात उस इंसान की है जो मुंतखबे कायनात है, जुमला हसनात से बुलंद, फिक्र ख्यालात से बरतर और औसाफ खुदावंदी का आईनादार।
1: जी हाँ, वही पारे जिगर गोशे रसूल, फातिमा का लाल हुसैन इब्ने अली अलैह सलाम।
0: हुसैन नूरे खुदा, मुस्तफा का लखते जिगर, हुसैन फातिमा की जान, अली का नूरे नजर, हुसैन कुव्वते इस्लाम, बाजुए शब्बीर।
2: वही हुसैन जो जुल्म के खिलाफ नबर्दाजमा हुआ और जिसने अपना सब कुछ लुटाकर इस्लाम का परचम बुलंद किया।
0: इस्लाम जिसका दूसरा नाम अमन आश्ती है, मोहब्बत व उखुव्वत है, रवादारी है।
1: और जो खुद में एक मुकम्मल दर्स इंसानियत है।
0: इस्लाम जिसको हुसैन ने अपने खून से सींचा, हुसैन जिसके नाम व काम से इस्लाम की ताबंदगी कायम व दायम है।
2: हुसैन नाम है इस्लाम की कयादत का, हुसैन नाम है एक काबे इमामत का, हुसैन नाम है ईमान की हकीकत का, हुसैन नाम है इस्लाम की जमानत का, हुसैन नाम है एक वारिसे शरीयत का, हुसैन नाम है इस्लाम की हकीकत का, हुसैन नाम है सर चश्मे हिदायत का, हुसैन नाम है बस इख्तिताम हुज्जत का, हुसैन नाम है बख्शिश का और शफ़ात का, हुसैन नाम है एक जान निसारे उम्मत का, हुसैन नाम है एक खिदमत रिसालत का, हुसैन नाम है आलिम शफी उम्मत का।

0: अलैहि वसल्लम की हिदायत से मुनहरफ हो चुकी थी, इंसानियत पारा पारा थी।
1: ऐसे दौर में जरूरत थी एक ऐसे मुत्तकी और परहेजगार की जो दुनिया की नेमतों से परे, सऊबतों और मुश्किलों से बेपरवाह, हुक्म खुदाबंदी के ताबे, अपनी बेलौस कुर्बानियों से इंसानियत को नेस्त नाबूद होने से बचा सके। और ऐसे वक्त में
0: हुसैन ने कहा, इस्लाम को बका दूंगा, यजीदियत के निशानात को मिटा दूंगा।
2: और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने इस मकसद में कामयाब हुए और मुहाफिज़े इंसानियत बने।
0: इंसानियत जो हर दौर में बनी है आदम का अव्वल और आखिरी उसूल है,
1: उसी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हुसैन ने बेमिसाल कुर्बानियां पेश की।
0: लिहाजा हुसैनियत उसूल इंसानियत है और औसाफ हुसैनी का दूसरा नाम ही इंसानियत है।
2: शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के इस दौर में अगर इंसानियत से आज भी इनकार नहीं तो दुनिया को आज भी है जरूरत हुसैन की।
0: हुसैनियत कल भी एक जरूरत थी, आज भी है और हमेशा रहेगी।
1: इंसानियत का हल सिर्फ हुसैनियत में पोशीदा है।
0: आइए उस दौर पर नजर डालें जब मुआविया के बाद हुकूमत की बागडोर यजीद के हाथ में है और हुसैन से इसरार है कि वो यजीद के हाथ पर बैत करें,
2: यानी शैतानियत को कयादत और उसके पैरोकार को अपना कायद और रहनुमा तस्लीम करें।
0: यजीद की ये कोशिश कि इमाम वक्त उसके हाथ पर हाथ रखकर उसकी बरतरी कबूल करें, उससे बैत करें, हर तरह से नाकाम रही।
1: इमाम हुसैन के अंसारो अहबाब ने कई बार चाहा कि यजीद के कासिदों और लीडरों से जंग करके किस्सा वहीं के वहीं ख़त्म करें, लेकिन हुसैन ने हर बार अपने साथियों को सबकत ले जाने से बाज रखा, इसलिए कि वो दुनिया को दिखा देना चाहते थे कि शर्रो फसाद और जंगो जदल की शुरुआत उनकी तरफ से नहीं हुई।
0: रफेशर की खातिर हजरत ने अपने अहले हरम और भाइयों और अजीजों को साथ लेकर 28 रजब सन 61 हिजरी को मदीना छोड़ा और मक्का पहुंचे।
2: मक्का मौजमा में हजरत को मालूम हुआ कि हाजियों के भेस में लोग उनके कत्ल को आए हैं और हालत एहराम में उन्हें शहीद करना चाहते हैं।
0: हजरत ने इस ख्याल से कि खाना काबा की हुरमत जायल ना हो, हज को उमरा से बदल कर तवाफ किया और 8 जिलहिज सन 61 हिजरी बमुताबिक सन 680 ईस्वी मक्का से कूच किया। मंजिले अशराफ में यजीद का फौजी दस्ता राह में हायल हुआ। हजरत ने उससे गुफ्तगु की, आखिर ये तय पाया कि आप न वापस मक्का जाएं और न कूफा की जानिब कूच करें, किसी और तरफ चले जाएं।
1: हजरत ने वो राह छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया और 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को जमीन करबला पहुंचे, तमाम करके हकीकत का रास्ता पहुंचे। हुसैन दूसरी तारीख करबला पहुंचे, इसी जमी के लिए कहे गए थे सबसे रसूल। सफर तमाम हुआ, शाह करबला पहुंचे, इसी से काफिला दरिया के पास ठहरा था। दहकते खेमों में साहिल की कुछ हवा पहुंचे, अभी कयाम किया था न आले अहमद ने हटाने खेमों को, दरिया पे पुरजफा पहुंचे।
0: बढ़ती रहेगी आज से अब शान करबला, सिप्ते रसूल हो गया मेहमान करबला।
2: आयात हक से भर गया दामान करबला, सूरा कोई है और कोई कुरान करबला।
0: महमिल में गम से हजरत जैनब तड़प गईं, आई जोड़ के खाके बयाबान करबला।
1: कुछ दिन गुजारना है इन्हीं जलती खाक पर, 10 रोज भी रहेंगे न मेहमान करबला।
0: आया है जिसकी प्यास से मौजों में इनकलाब, देख ए फुरात कौन है मेहमान करबला।
2: मैदान करबला में अहले बैत अथार के खेमे अभी नस्ब भी न होने पाए थे कि इब्ने ज़ियाद का शुतर सवार नामा लेकर पहुंचा और यजीद के रिसालदार से गोया हुआ कि हुसैन को दरिया के किनारे या आबादी में ठहरने ना दो।
0: ये सुनते ही जवाना ने बनी हाशिम और मौला के अंसार व अस्हाब बफर गए और अर्ज की कि मौला हुक्म दीजिए कि अभी उनसे समझ लें।
1: हजरत ने फरमाया,

0: तुमको सबकत मुनासिब नहीं, तुम अपने खैमे खुशकी में नस्ब करो।
1: बिलाखिर एक वक्त वो आया कि इब्ने ज़ियाद की फौज हर तरफ से आना शुरू हो गई। 7 मुहर्रम तक मैदान फौजों से भर चुका था।
2: उसी रोज हुक्म हुआ कि नहर फुरात से एक कतरा पानी का लश्कर हुसैन को ना मिलने पाए, पानी पर पहरे बैठा दिए गए।
0: मेरे आका हुसैन प्यासे हैं, नाजिशे मशरकैन प्यासे हैं, महर में जिन के अलकमा आई उनके ही नूरे ऐन प्यासे हैं। आइए रन में साकिये कौसर, आपके दिल के चैन प्यासे हैं। एक जानिब है 1 लाख नहीं और एक जानिब हुसैन प्यासे हैं। सर पटक कर ये कहती हैं मौजें, लबे दरिया हुसैन प्यासे हैं।

0: भूख और प्यास का माहौल, हर तरफ बढ़ती हुई सख्तियां, और फिर 9 मुहर्रम को करीब असर इब्ने साद ने धावा बोल दिया। फौज इमाम के खेमों तक पहुंच गई।
1: हजरत ने एक रात की मोहलत मांगी, बमुश्किल रात भर की मोहलत मिली।
2: वो रात मौला और उनके असहाब ने इबादत में गुजारी।
3: उस दिल शिकस्ता हुसैन की तशनलबी को अपनी वीरान आंखों में छिपाए ये रात कितनी सोगवार, कितनी सरगरा है। नहरे फरात की मौजों का शोर भी इस रात के उस सन्नाटे को न तोड़ सका था जिस सन्नाटे में तमाम कायनात की रूह गुम थी। वो रात जिसकी खामोशी में शहादत हुसैन का पैगाम पिन्हा था, वो रात जिसकी हलचल से दिले आफाक में तला तुम था, वो रात जिसके ताक में शम वफा का नूर झिलमिलाता था, वो रात जिसकी कोख से जन्मे हुए उजाले में मदीने का चिराग गुल हुआ था। उस रात के आखिरी पहर की हौलनाक तारीकी में यजीदी लश्कर उन मंसूबों को आखिरी शक्ल दे रहा था जिनका मकसद फातह खैबर के जिगरबंद फातिमा जहरा की नूर ऐन गरीबुल वतन तशनलब हुसैन का लहू करबला की तपती रेत पर बेदरेख बहा देना था। एक तरफ बेपनाह कुव्वत व ताकत के नशे में चूर यजीदी फौज और दूसरी जानिब उस दश्त करबला में बेकसो तशनलब हुसैन जिनके मुख्तसर से कुनबे और साथियों के खेमे में आंधी के जोर से मिशल तक न ठहरती थी। खेमा भी अंधेरे में काला नजर आता था। आंधी से उड़ती हुई खाक की तहें हरम शेरे खुदा के चेहरे पर थी और बच्चे प्यास से इस तरह कुमला गए थे जैसे गर्म हवाओं ने फूलों का अरक खींच लिया हो। खुदावंदा, वो कैसी सुबह है जो इस रात के सीने में हुमक रही है और ये किन निगाहों से खेमा इस्मत की बीवियों ने आसमान की तरफ देखा है।

0: हम है, अजीब इसकी शान है, गजब की आन बान है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है।
1: दिलावरी में मर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है, कि जिसके दबदबे से न्या अदू का रंग जर्द है। हबीब मुस्तफ़ा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, जबी तो इसके सामने ये फौज गर्द गर्द है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है।

0: अब इतना मौका मिला कि एक बुलंद मकाम पर पहुंचकर जरा दम लें। अपनी तन्हाई याद आई, बिछड़े हुए अंसारो अज्जा को नाम ले लेकर पुकारा, लेकिन सिवाय अपनी आवाज के कोई और आवाज नहीं।
1: ये आवाज हजरत के खेमाए अहले हरम तक पहुंची। हजरत की उस मुसीबत पर कोहराम बरपा हो गया। खेमा में चहार सू गिरियाओ जारी है।
2: आपने आवाज़ गिरिया सुनकर घोड़े की बाग मोल दी और दरे खेमा पर तशरीफ लाए।
3: खेमा इस्मत में गए तो बीबियों की गिरिया उजारी से रूह दरस गई। बेहोश आबिद बीमार पर नजर की, गहवारे में 6 महीने के बेटे नन्ने अली असगर को प्यास से निढाल देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। वारफ्तगी में असगर के मुंह पर मुंह रख दिया। आंसू जो टपके तो उस नन्नी सी जान ने पानी समझ के लब खोल दिए। नागाह ख्याल आया तो असगर को गोद में उठाकर बाबा से कहा, इनको लिए जाता हूं, शायद किसी को बच्चे के हाल पर रहम आए और कोई पानी का खतरा पिलाए। गोद में असगर तचना दहन को लिए इमाम दीन लश्कर आदा के पास गए। कहा, तुम्हारे नजदीक कसूरवार अगर हूं तो मैं, इस नीम जा मासूम बच्चे को देखो, इसका तो कोई कसूर नहीं, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो, इसका हल तर कर दो। कि तभी सफेदा से अचानक एक तीर, एक पैकाने जुल्म आया जो अली असगर की गर्दन से पार हो गया। वो फर्जंद गुलजार इब्ने बूतराब के हाथों पर बिस्मिल हुआ तो शाह नामदार सर ता कदम लरसने लगे, लेकिन जबान से बजुस शुक्र परवरदिगार और कुछ न निकला। असगर के गले से तीर खींचा तो लख्त दिल का लहू उबल पड़ा। इमाम ने जख्म से चुल्लू मिला दिया। जब हाथ भर गया तो चाहा कि इसे खाक पर फेंक दें, लेकिन जमीन ने दर्दनाक आवाज में फुगा की कि मौला, ये खून नहा के तिफले हुसैन है, ये मेरे सीने पर पड़ा तो मेरा सीना शक हो जाएगा। हुसैन ने आसमान की तरफ हाथ उठाया तो आसमान ने सदा दी कि अल्लामा।

خوشی خسال.

कमर कस कर अली अकबर ने जब सर पर रखा शमला, कमर कस कर अली अकबर ने जब सर पर

तो फिर तशबीह किससे दूं, जवाना ने अली को दूं, तो फिर तशबीह

अनी सब तो हिला लो बद्र को यक्षा समझते हैं अनीस अब तो हिला

कष्ट में मजलूम का कट गया सूखा गला छुट।

प्यासे, रोती थी कोई बीबी तो देती थी दिलासे, चौकुट्ठे न मासूम भी सोए हैं प्यासे। फिर उठी बड़े अज़्म से हैदर की दुलारी, एक चोप जले खेमे की हाथों में उठाई,

अली की मुझे पहचान ले जालिम, अंजाम ना रुकने का भी अब जान ले जालिम, बेटी हूँ अली की मुझे पहचान ले जालिम।

पर रहते हुए इस तरह की हरकत उसे नहीं करनी चाहिए थी। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की रायजनी के जवाब में ये बात कही। पाकिस्तान की जानिब से रायजनी का जवाब देते हुए जनाब हरीश ने मुआविन सदर की हैसियत से उसके तर्ज अमल की सख्त तनकीद की और जम्मू कश्मीर पर भारत के दीरीना मौकफ को दोहराया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत तर इश्तराक के लिए कहा है। मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात और डिजिटल दुनिया में दहशतगर्दी के बदलते तौर तरीकों में इजाफे के इजाले के लिए ब्रिक्स ममालिक के दरमियान जाम बातचीत और इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। तेहरान में भारत के सफारतखाने ने मुल्क में बेहतर सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है। हालिया मुस्बत वाकयात और मजमूई सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनज़र सफारतखाने ने हिंदुस्तानी बाशिंदों को मशवरा दिया है कि वो सोच समझ कर और एहतियात के साथ ईरान का सफ़र करें। भारतीय बाशिंदों को यह भी सलाह दी गई है कि वो अगले नोटिस तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सिफारतखाने ने यह भी कहा है कि जो भारतीय बाशिंदे इस वक्त ईरान में हैं और जो नागुजीर वजूहात की बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं वो इंतहाई एहतियात से काम लें, हालात से बाखबर रहें और चौकसी बरतें। उनसे यह भी कहा गया है कि वह लगातार सिफारतखाने की बाजाबता वेबसाइट से राबता कायम करते रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने आज़म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के आज़म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानिगत और मदद के अपने अहद को ताज़ा किया। जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रास लफान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासर कुनबों के तई हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की। नीति आयोग के नायब सरबराह डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी ने कहा है कि आखिरी सहमाही में भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात बताई। डॉक्टर लाहिरी ने यह भी बताया कि इस अरसे में भारत की बरामद 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई जबकि दरामद में 6.5% का इजाफा हुआ। मुल्क भर के 6 नौजवानों की क्यादत वाले स्टार्टअप मुल्क ने यूथ कोलैप्स नेशनल इनोवेशन चैलेंजेस 2026 का 8वां एडिशन जीत लिया है। ये पहल मुश्तरका तौर पर अक़वामे मुत्तहदा के तरक्याती प्रोग्राम और सिटी फाउंडेशन ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तआवुन से शुरू की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान चैलेंज से भरपूर हालात में दोनों मुल्कों के बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका अकदार हैं और दोनों मुल्क मिलकर और ज़्यादा करीबी इश्तराक के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर खारजा छो ह्यून के साथ मीटिंग में अपने इफ्तताहिया कलमात में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा बैन अल-अक़वामी हालात में भरोसेमंद साथियों के दरमियान तआवुन और इश्तराक पहले से कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा ने

बताया कि उन्होंने टेक्नोलॉजी, दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और जहाज साजी समेत बहुत से शोबों में तआवुन का जायजा लिया। इसके अलावा फरीकैन ने मुतालिका खित्तों और दुनिया के हालात और पेशरफ्त के बारे में भी तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत जनूबी कोरिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और उन्होंने इश्तराक तआवुन को मज़ीद मुस्तहकम करने की गरज से मुफीद तबादला ख्याल किया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जा रहा है। 24 जून 1967 को पासपोर्ट से मुतालिक कानून बनाया गया था, उसी मुनासबत से ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दूसरे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, चिप वाले ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकखाने के पासपोर्ट सेवा केंद्र और रिकॉर्ड तादाद में पासपोर्ट जारी किए जाने से सफ़र में आसानी पैदा हुई है। आलमी मौक़ों तक रसाई में तोसी हुई है और शहरियों को बाख्तियार बनाया गया है। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर वजीर खारजा ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और बैरून मुल्क में पासपोर्ट से वाबस्ता सभी अहलकारों को मुबारकबाद दी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज कोंकण और गोवा में तेज से बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान साहिली कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। महकमे ने इस महीने की 29 तारीख तक आसाम, मेघालय, अंदरूनी कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बर्तानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। ये दौरा 5 जुलाई से 14 जुलाई तक होगा। नए कोच टिम वाइट की निगरानी में टीम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मुकाबले खेलेगी, जो आइंदा बैन अल-अक़वामी मुकाबलों की तैयारी का एक हिस्सा होगा, जिसमें जूनियर एशिया कप भी शामिल है। फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने आज मैक्सिको में ग्रुप के एक मैच में DR कांगो को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाए जाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान

0: कि इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बर्तानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। ये दौरा 5 जुलाई से 14 जुलाई तक होगा। नए कोच टिम वाइट की निगरानी में टीम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मुकाबले खेलेगी, जो आइंदा बैन अल-अक़वामी मुकाबलों की तैयारी का एक हिस्सा होगा, जिसमें जूनियर एशिया कप भी शामिल है। फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने आज मैक्सिको में ग्रुप के एक मैच में डीआर कांगो को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अक़वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाए जाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजिशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और यह भी कहा है कि वो ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज जारी रखें। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दुनिया के इस चैलेंज भरे माहौल में भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान गहरे ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 900। श्रोताओं को बलविंदर कल्याणा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज बुधवार का दिन है और ये दिन होता है दीदा गीत सुनने के लिए आप भेजते हैं पोस्ट कार्ड या फिर नए जमाने का माध्यम ईमेल और व्हाट्सएप संदेश। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि वो पहला आदमी कौन होगा जिसने अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए रेडियो से संपर्क किया होगा। उस संपर्क का माध्यम क्या रहा होगा इसकी सही सही जानकारी प्राप्त कर पाना जरा मुश्किल है, पर हम जानते हैं कि रेडियो के शुरुआती दिनों से ही लोग अपनी पसंद के गीत सुनते रहे हैं। भारत में पत्रों के माध्यम से अपनी पसंद का गीत सुनने का चलन 1935-40 में बढ़ना शुरू हुआ था और 1950 से लेकर मोबाइल युग के आने तक लाखों पत्र आकाशवाणी केंद्रों तक पहुंचे और पढ़े गए। पोस्ट कार्ड के माध्यम से पसंदीदा गीत सुनने का चलन सबसे ज्यादा बिना का गीतमाला से शुरू हुआ। रेडियो सिलोन के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति अमीन सयानी द्वारा की जाती थी। इस कार्यक्रम का नाम बाद में सिबा का गीतमाला रखा गया। नाम बदलने के बाद भी लोगों के पत्र भेजने का सिलसिला कम नहीं हुआ। रेडियो सिलोन के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो पर भी खतों का पहुंचना और पढ़े जाने का सिलसिला बढ़ा, जो आज भी जारी है। दोस्तों अब के बदले दौर में आज भी हमारे पास ढेरों पोस्ट कार्ड पहुंचे हैं जिन्हें हम आपके नाम के साथ पढ़कर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में शामिल करते हैं, फिर चाहे वो क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम हो या पत्रोत्तर हो या हिंदी फरमाइशी कार्यक्रम। सब में आपकी मोहब्बत हम तक पहुंचती है। आपके सुझाव आपकी शिकायतें सुनी और पढ़ी जाती हैं। इसके साथ साथ इन शिकायतों और सुझावों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, जिसको उच्चाधिकारी वर्ग से लेकर सारा आकाशवाणी परिवार आपकी पहुंचाई गई बातों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्यक्रमों में नाम में समय आदि में बदलाव करते हैं, ताकि आपको महसूस ना हो कि रेडियो आपको पराया समझता है। रेडियो आपका अपना है, आपका हृदय है, जिसमें खून हमारी आवाजों का बहता रहता है। इसकी जीती जागती मिसाल आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इसके जागरूक श्रोता जब चाहते हैं अपने संदेशों के माध्यम से कार्यक्रमों में परिवर्तन करवाते हैं और रेडियो की उपयोगिता बनाए रखने में मदद करते हैं।

हैं। धन्य हैं आप सब श्रोता, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन फिर वही बात, वो पहला आदमी कौन जिसने सुना होगा अपनी पसंद का पहला गीत। ऐसे में मुझे याद आ रही है सुमित्रा नंदन की कुछ लाइनें। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो अनजान का गीत सुनते हैं।

0: आपने आवाजें सुनी लता मंगेशकर और शबीर कुमार की, अनजान के बोलते, बप्पी लहरी का संगीत और फिल्म का नाम था मिट्टी और सोना। सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। सालपुरा से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, सिद्धार्थ नगर से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। अगली जो फरमाइश हमारे साथ पहुंची है, नलेश्वर से पीएस नवालकर, निर्मला और विशाल की। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और गांव नथाना से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, हनुमान सहारण, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़। और इसी गीत को सुनना चाहता मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला के साथ ओम कुमार ने। वरिंखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार और इनके परिवार के सदस्य हैं, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु, ताशु, अरणव आनंद और सत्य आनंद पाकुड़ झारखंड से मैसेज कर रहे हैं। और दादा बाबू रोड झारखंड से ही मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी थी गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जोहरी ने। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल और कमला रानी के साथ गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। श्रोतो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से। कार्यक्रम आपकी पसंद जारी रहेगा। अगला गीत सुनने से पहले सुनते हैं एक वार्ता। विषय है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। वार्ताकार हैं मनीला सचदेवा।
1: नमस्कार साथियों, आप सन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ और मेरा नाम है मनीला। मैं एक इंजीनियर हूँ और साथ ही एक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में भी जुड़ी हूँ। अपने अनुभव में मैंने छात्रों को

बहुत करीब से देखा है। उनकी मेहनत, उनके सपने, उनकी उम्मीदें और कई बार उनका तनाव भी। आज हम बात करेंगे तनाव प्रबंधन और छात्रों का बेहतर भविष्य। साथियों, आज का विद्यार्थी केवल किताबों का भार नहीं उठा रहा, वह अपेक्षाओं का भार भी उठा रहा है। अच्छे अंक लाने का दबाव, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की होड़, भविष्य की चिंता और सोशल मीडिया पर लगातार तुलना, धीरे धीरे ये सब मिलकर मन पर ऐसा प्रभाव डालते हैं जिसे हम तनाव कहते हैं। तनाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। थोड़ा तनाव हमें प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, लेकिन जब यही तनाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह हमारी सोच, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को प्रभावित करने लगता है। आज कई छात्र बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता, डर और अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं। कई बार वे मुस्कुराते ज़रूर हैं, लेकिन मन से बहुत थके हुए होते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि कई बार वे अपनी परेशानी किसी से कह भी नहीं पाते। लेकिन क्या जीवन केवल एक दौड़ है? क्या हमारी पहचान सिर्फ अंकों से तय होती है? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, हर छात्र का सफ़र अलग होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में, कोई संगीत में, तो कोई कला और रचनात्मकता में। हमें यह समझना होगा कि सफलता का केवल एक ही रूप नहीं होता। साथियों, कई बार माता पिता भी अनजाने में बच्चों पर बहुत दबाव डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे आगे रहे, सबसे ज़्यादा अंक लाए, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बने, लेकिन हर बच्चा अलग होता है। अगर हम एक मछली से पेड़ पे चढ़ने की उम्मीद करेंगे तो वह पूरी ज़िंदगी खुद को कमज़ोर समझती रहेगी। इसलिए बच्चों की तुलना दूसरों से नहीं, उनकी अपनी क्षमता से की जानी चाहिए। आज एक और बड़ी समस्या है, वो यह है कि बच्चे अपनी भावनाओं को छुपाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी कमज़ोरी बताएंगे तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती की निशानी है। जब मन परेशान हो तो रो लेना भी ठीक है, किसी से बात करना भी ठीक है, कुछ समय आराम करना भी ठीक है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। जैसा मैंने आपको कहा, मैं शिक्षक हूँ, मैं आपको अपनी कक्षा की एक छात्रा का उदाहरण देना चाहती हूँ। वह बहुत होशियार थी, मेहनती भी, लेकिन हमेशा तनाव में रहती थी। हर परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? उसने धीरे से कहा, मैम, अगर मैं टॉप नहीं आई तो लोग क्या सोचेंगे? उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि आज कई बच्चे दूसरों की उम्मीद का बोझ उठाए हुए हैं। वे पढ़ाई अपने सपनों के लिए कम और लोगों की सोच के डर से ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने उसे समझाया, तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे नंबर नहीं है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी इंसानियत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा करना सीखा। उसने पढ़ाई को बोझ नहीं, सीखने का माध्यम समझा। उसने दोस्तों से बात करनी शुरू की, खुद को समय देना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, वह मानसिक रूप से मजबूत बन गई। साथियों, हम अक्सर असफलता से डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर बच्चा गिरना ना सीखे तो चलना कैसे सीखेगा? असफलता जीवन का अंत नहीं होती, वह एक सीख होती है। दुनिया के कई महान लोगों ने शुरुआत में असफलता देखी, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय सीखना चुना। जब एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वह कई बार गिरता है, लेकिन वह गिरने के डर से सीखना नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही जीवन में भी हमें गिरकर उठना सीखना पड़ता है। याद रखिए, धीरे चलना गलत नहीं है,

0: रुक जाना गलत है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप असफलता से डरते हैं? क्या आप दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकते हैं? क्या कभी आपको लगता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? अगर हाँ, तो समय है अपनी सोच बदलने का, क्योंकि आपकी तुलना किसी और से नहीं, सिर्फ कल के अपने आप से होनी चाहिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज सोशल मीडिया भी तनाव का एक बड़ा कारण बन चुका है। लोग अपनी सफलता दिखाते हैं, लेकिन अपने संघर्ष बहुत कम दिखाते हैं। अपनी खुशियाँ दिखाते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत कम। इसी कारण कई छात्र सोचने लगते हैं, सबकी ज़िंदगी मुझसे बेहतर है। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। सोशल मीडिया वास्तविक जीवन नहीं है। हर चमकती तस्वीर के पीछे संघर्ष भी होता है। इसलिए खुद को दूसरों की तस्वीरों से मत आंकिए। आप जैसे हैं वैसे ही विशेष हैं। आप बात करते हैं तनाव कम करने के कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपायों की। सबसे पहले, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। पढ़ाई जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आराम, अच्छी नींद और खुद के लिए समय निकालना। अक्सर छात्र देर रात तक जागते रहते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। अच्छी नींद हमारे मन को शांत और मजबूत बनाती है। दूसरा, रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट शारीरिक गतिविधि ज़रूर करें। योग, दौड़, खेल या हल्की सैर, ये शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखते हैं। तीसरा, अपने मन की बात लिखने की आदत डालें। कई बार डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। मैं हमेशा अपने छात्रों को भी यही कहती हूँ कि आप अपने रोज की दिनचर्या को डायरी में लिखें। चौथा, मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं। हर समय ऑनलाइन रहना ज़रूरी नहीं है। पांचवा, अगर मन भारी लगे तो किसी अपने से बात कीजिए। माता पिता, शिक्षक, दोस्त या परिवार, किसी से भी अपनी मन की बात साझा करना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। साथियों, आत्मविश्वास भी तनाव कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह धीरे धीरे बनता है छोटी छोटी सफलताओं से। हर सुबह खुद से कहिए, मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। साथियों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूँगी, समय का संतुलन। आज छात्र बहुत व्यस्त है, स्कूल से होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क, स्कूल कोचिंग होमवर्क, सब कुछ साथ साथ चलता है। लेकिन लगातार काम करना ही सफलता नहीं है। अगर मोबाइल की बैटरी को चार्ज की ज़रूरत होती है, तो मन को भी आराम की ज़रूरत होती है। परिवार के साथ समय बिताइए, प्रकृति के बीच जाइए और खुद को थोड़ा समय दीजिए। साथियों, आज की पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन तुलना उन्हें कमज़ोर बना देती है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। पेड़ पर फल भी अलग अलग समय पर पकते हैं, इसलिए अपने समय पर भरोसा रखिए। अब मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी, अगर कभी जीवन कठिन लगे तो मदद लेने से मत डरिए। बात साझा करने से मन हल्का होता है। चुप रहना समाधान नहीं है। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। अगर मन स्वस्थ है तो जीवन भी संतुलित लगता है। अब मैं खुद को स्वीकार करने की बात कहना चाहूँगी। हर व्यक्ति में खूबियाँ और कमियाँ होती हैं। खुद को स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की शुरुआत है। साथियों, धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ें समय लेती हैं। बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, इसलिए अगर परिणाम देर से आए तो निराश मत होइए। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, सफलता केवल मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि मन को शांति के साथ आगे बढ़ाने का नाम है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपने मन को मजबूत बनाइए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाइए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो हार नहीं मानते हैं। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता। आज का विषय था आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। वार्ताकार थी मनीला सचदेवा। तो श्रोताओं, जारी रखते हैं आपकी पसंद।

मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज़ों को आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म का नाम था खलनायक। सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। दतरेंगी भाटापारा से हरिमणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा। मोहम्मद जाकिर मंसूर, कमरून निशा, सविश्ता पलक, लुबना और यस मंसूरी, मंसूरी रेडियो क्लब से आप सुनना चाहते थे इसी गीत को। पीपर लोड सरगाम छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति के साथ शिवांश वर्मा। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिसान खान और इनके साथी। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण टिरवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल और इनके साथी। सहारनपुर से गांव कुम्हार हीड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम और आदिब। इसी गीत को सुनना चाहता कोल सिटी बरका काना से अफलाज़।

0: और आदिब इसी गीत को सुनना चाहता, कोल्ड सिटी बरका काना से अफलाज, शाहीन सुल्तान सोनू, तस्नीन निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। गांव दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शिवलाल बेनीवाल, शांति बेनीवाल और मंजू मोहित हेमंत भी इसी गीत को सुनना चाहते थे। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता, इससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
5: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सौतन। लता और किशोर की आवाजें हैं, सावन कुमार का गीत है और उषा खन्ना का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता। गांव अरायन से बनवारी लाल जयपाल, विमला सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया और इनके साथी। गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्रीकर्णपुर से राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुट्टू, जीनू, मन्नू, शिव सेठी, कर्णपुरी, इस्माइल टुटेजा, पवन गुज्जर, इस्माइल टुटेजा और थानेदार अमरीक सिंह कचूरा। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। और हमारे पास फरमाइश विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूनत, चेतन नाहटा की पहुंची है बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन। और अगले हमारे श्रोता हैं विरम गांव गुजरात से अजीत भावसागर, परमीला भावसागर, भावेश खत्री और इनके साथी। नाभा जिला पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मन्नू और इनके साथी। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता देवी और इनके साथी। सुना चाहते हैं इसी गीत को। और गांव जोगी वाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी के साथ निमित आहूजा भी सुनना चाहते हैं इसी गीत को। गांव लोहगढ़ ठाकुर वाला से स्वर्ण सिंह किल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज। फरमाइश के लिए ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है गांव बांडी काला फाजिलका से। ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी करमा बगड़िया, गांव बांडी वाला फाजिलका से। गांव फरांसी जिला सिसार से राजकुमार डूडी, सौरव डूडी और प्रमोद कुमार डूडी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा। गांव घमटिया से जगदीश ठुकिया, परमीला ठुकिया, ज्योति, शिवम ठुकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विशु ठुकिया और इनकी दोहती ईवा धारणिया, आपका भी स्वागत है। गांव

पीएसए सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन मेलबर्न, रॉबिन सिंह जोशन वैंक्यूवर। और इसी गीत की फरमाइश की है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा ने। जिला बालोत राजस्थान से लाल प्रजापत, मोहन लाल प्रजापत, मानक उषा बाला देवी और इनके साथी, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। बठिंडा रोड मंडी डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। इसी गीत की फरमाइश की है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत, फिल्म का नाम है सौतन और आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, लेकिन एक और नाम संग्रिया से श्याम मीढ़ा और सुमन मीढ़ा। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक आकाशवाणी परिवार की ओर से और सभी श्रोताओं की तरफ से। आपके लिए गीत और एक गीत और।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में, आपकी पसंद में। अब सुनते हैं फिल्म खतरों के खिलाड़ी का ये गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता। अलीका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सर्वजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी। आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, परवीन।

अवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर। मंडी केसरी सिंह पुरसे, बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष सूद और विश्वजीत। इसी गीत को सुनना चाहते हैं चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क, गोरा, जगसीर और इनके सभी साथी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं चक 5 MD पत्रोड़ा, श्रीगंगानगर से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई गायकवाड़, कोली नांदेड़ से। फरमाइश करते हैं सीकर से, गांव गोविंदपुरा से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर और तुषार सिंह के साथ रिंकी शेखावत। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, बाबू भाई चांदीवाला और इनके साथी। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निप्पी साहनी और सुनीता साहनी। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव ठाणी लाल खां से जावेद खां, अमरान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां, सोहिल खां, जुनेद खां, मुकराम, आरिफ, ईयान, अरशद, अरमान और इनके साथियों ने। इसी गीत को सुना चाहा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे ने। गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप चिनागल, इंद्रा मुकेश, दिनेश अंशु, बलदेव कटारिया और इनके साथी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और ये मैसेज हम तक पहुंचा है चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनकरा, प्राची सोनकरा, सोमल सोनकरा, कार्तिक सोनकरा और सोनकरा परिवार के सभी साथी। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं, शामिल है कार्यक्रम आपकी पसंद में। और अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और इनकी पोती रौनकदीप कौर भी सुनना चाहती हैं इसी गीत को। रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके साथी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। बुलढाणा महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर और दीपाली के साथ श्लोक कुमार, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और लखुवाड़ा हेड से भावर लाल, कृष्णा, विशाल, राजवाला, ममता, लक्षिता, नव्या और इनके साथ साथ हैं मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम और इनके साथी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक और दीपक कुमार खटक। लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश लिख भेजी है खत के माध्यम से। नगराना से लालचंद नाथ, प्रेम, सोहन, मंजू प्रदीप, अमन, अंकुश, रीटा, राहुल, दीपक, पीयूष और योगेश नाथ ने। मलोट पंजाब से राजकुमार, इंदौरा विमला, इंदौरा गैरी, इंदौरा विकास, इंदौरा प्रियंका, इंदौरा रमन, इंदौरा रितु, इंदौरा भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशुक खन्ना, बेबी दिव्यांशी, इंदौरा। गांव खैरे का सिरसा से इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, हनी लोट, मसीदा डब्वाली से दर्शन लोट, मूर्ति रानी और निहारिका के साथ सारिका। इसी गीत की फरमाइश कर रही हैं मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। नई आबादी अबोहर पंजाब से ओम प्रकाश सोनी, साहिल सोनी, अमन सोनी, करण सोनी, महेंद्र विश्नोई। कनेरा मोहल्ला पटियाला पंजाब से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, किरण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपीपुरी, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, अनीतापुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रामापुरी और आरएसपुरी। मलोट पंजाब से ही कश्मीरी लाल खटक, जगदीश खटक, जैतक खटक, रहीश खटक, मुकेश खटक और गुलवंश खटक। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बुच्चू कैंचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, कर्णवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन एकम, दमन और अभिजोत। गांव राजपुरा अभोर से हरदीप सिंह, जसवीर सिंह, ज्वाला सिंह, गुरसाहिब सिंह और डॉक्टर धर्मवीर झोरर। डब्वाली हरियाणा से जेके बागौलिया, सुनीता बागौलिया, संजय अनिल और मीनू बागौलिया। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अनारकली बाजार जगराहों से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी कव्या और भाई सुच्चा पाठक। श्रीगंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा और गिदड़बाहा पंजाब से मनप्रीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हिनाशा और पदमपुर से पवन तनेजा और योगेश। सुनते हैं ये गीत।

फिल्म का नाम है प्यासा सावन। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजें हैं, संतोष आनंद के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के ठीक 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार से रहेगा। आपसे थोड़ी देर बाद यानी कि 6:05 पर आप सुनेंगे सरायकी, 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, और 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, और इसके साथ साथ 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल, आज की प्रस्तुति रहेगी सुनील वर्मा की। कार्यक्रम पत्रोत्तर रहेगा जो आपके व्हाट्सएप और ईमेल और पत्रों पर आधारित रहेगा। इसके साथ साथ बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी आपको दी जाएगी। 7:45 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत, और रात्रि 8 बजे आप सुनते हैं एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं किसी एक फिल्म के गीत और साथ में उसकी जानकारी। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट स्कैन, खेल समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज 8:09 यानी कि अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। श्रोतो, रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ गजलें। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम चर्चा का विषय है, और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हेलो मन भावन। इस कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक हैं नवीन सिसोदिया।

और आज की प्रस्तुति रहेगी श्रीपाल शर्मा की। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। यह समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और आज की हमारी सभा का समापन रहेगा रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, रात्रि 11 बजे तक 10 बजे से शुरू होकर हेलो मन भावन आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक नवीन सिसोदिया जी रहेंगे और प्रस्तुति श्रीपाल शर्मा की। और संध्या 7 बजे आप सुनते हैं चौपाल। आज का कार्यक्रम रहेगा पत्रोत्तर, जो आपके व्हाट्सएप, ईमेल और पत्रों पर आधारित होगा। और प्रस्तुति रहेगी सुनील वर्मा की।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:05 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सराय की

झोंक माही दी। सामयिंद खिदमत डीएस संधूदा आदाब। सामयिंद सब कोनों पहलों पेशे असाड़े आज दे प्रोग्राम दी तफसील। प्रोग्राम दा आगाज हो सी ख्वाजा गुलाम फरीद दे सूफियाना कलाम दा जैकों पेश करे सुन सई सलीम इकबाल। इनकों बाद सई राजकुमार मलिक इंसान दे बुनियादी हकूक दे मौजू ते अपना एक तफसील जायजा पेश करे सुन। सई खैर मुहम्मद दा कलाम पेश करे सुन भगत गज्जन ते प्रोग्राम दे आखिर च सई गुनशान दास दे आवाज च ख्वाजा गुलाम फरीद दा हिक डोड़ा। सामिन इतहाई असाड़े आज दे प्रोग्राम दी तफसील। सामिन हुन समात फरमाओ सई सलीम इकबाल दी आवाज च ख्वाजा गुलाम फरीद दा सूफियाना कलाम।

0: इंसान को बुनियादी हक मिलन विच कोई शायद किथई रोक न लग सी।
1: सामईन ए हान सई राजकमल मलिक जिन्हें कने तुम सुनते पे हावे इंसान के बुनियादी हकूक के मौजू ते एक मालूमाती जायजा। सामईन हुन समात फरमाओ भगत गजन दी आवाज च सई खैर मुहम्मद का कलाम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की वीडियो में 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत अगर से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या की 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद राजस्थानी में। ये समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों की आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए सुपर सकर मशीन, कचरा उठाने के लिए अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन को रवाना किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की जन जागरूकता के लिए ब्रांडिंग ऑटो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजधानी जयपुर के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे।
2: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।

0: समारोह में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का माध्यम बन रहे हैं।
1: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, चार दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, पांच दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है, इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
0: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा, साथ ही ये प्रोजेक्ट प्रदेश का ग्रोथ इंजन साबित होगा। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर हुई पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उच्च स्तरीय बैठक में कही। श्री शर्मा ने रिफाइनरी की प्रगति और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे।

0: मुक्त स्तंभ बनेगा। साथ ही ये प्रोजेक्ट प्रदेश का ग्रोथ इंजन साबित होगा। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर हुई पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उच्च स्तरीय बैठक में कही। श्री शर्मा ने रिफाइनरी की प्रगति और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। बैठक के दौरान HRRL प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री को रिफाइनरी से निकल रहे विभिन्न उत्पादों के नमूने भेंट किए गए। गौरतलब है कि रिफाइनरी से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का उत्पादन शुरू हो चुका है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विशेष अभियान शुरू किया गया है। 5 जुलाई तक चलने वाला यह अभियान महिला और बाल विकास विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक की स्थापना के साथ प्रवेशोत्सव और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने अपने क्षेत्र में घर घर संपर्क कर जन समुदाय को खिलौना बैंक की जानकारी देंगी। 3 से 6 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों का चिन्हीकरण कर अभिभावकों को 1 जुलाई के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को सुबह 9 बजे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक का शुभारंभ होगा। RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर ने आज जयपुर लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मुलाकात की। श्री बागड़े ने उनकी शिष्टाचार भेंट थी। गौरतलब है कि आयोग के सदस्य श्री केसरी सिंह को हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने CA इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में डोंबिवली के शार्दुल शेखर विचारे ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। अभिनव सतीश ने दूसरा और तीर्थ जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का मुख्य परिणाम आज जारी हो सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आज हुई बैठक में वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम का अनुमोदन किया गया। इस बीच बोर्ड ने आज सुबह कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नतीजे जारी किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 1967 में पासपोर्ट अधिनियम लागू होने के उपलक्ष में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा और सशक्त नागरिक के संकल्प को दोहराना है। देश 2014 में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या के साथ 77 था, जो अब बढ़कर 545 हो गई है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर पेश है समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
1: पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे छोटे और दूर दराज के शहरों के लोगों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके। हाल ही में हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि देश में पासपोर्ट की बढ़ती तादाद बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या बढ़कर 138 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट मुहैया कराने की प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। ये विकसित भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है।
0: भारतीय सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। नागरिकों को जागरूक करने और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इसके जरिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना सेना तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाने और आपदा के समय नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के संग्राना 24 और 25 RB गांवों से इस ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा।

0: डीग जिले के कामा क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार कार ने करीब 10 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के शिकार लोग तीर्थराज विमल कुंड की परिक्रमा कर पैदल जा रहे थे। सभी घायलों को कामा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक हुई इस घटना से भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। प्रदेश में प्री मानसून की बरसात कई जिलों को भिगो रही है। आंधी बारिश की गतिविधियों के कारण पिछले कई दिनों से प्रदेश में हीट वेव से राहत बनी हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में अब तक 25 जिलों में असामान्य बरसात हुई है। 3 जिलों में अधिक पानी बरसा है, वहीं 3 में सामान्य और 9 जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज भी 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कल उदयपुर को छोड़कर सभी संभागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार हैं। 28 जिलों में येलो और श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। इस बीच आज हनुमानगढ़ में दोपहर बाद मौसम बदला और धूल का गुबार छा गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी व कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि बिरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोठ मूंग, ग्वार, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कृत करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। ये पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन की ओर से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है। आयोग ने बताया कि इस वर्ष की चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद विजेता स्टार्टअप को 3.5 लाख रुपए का सीड ग्रांट मिला, वहीं उपविजेताओं को 2,20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों को आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बीकानेर जिले में इन दिनों जल संरक्षण, शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर, कृषि, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। मॉनसून की आहट के बीच किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के प्रयास जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में रही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनेक रेल परियोजनाओं और रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों पर काम चल रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय विधि तथा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी भाग लिया। दोनों मंत्रियों ने आमजन के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन में योग के महत्व पर बल दिया। योग दिवस से पहले भी जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुर्वेद विभाग के विद्यार्थियों ने जूनागढ़ किले और पब्लिक पार्क में योगाभ्यास कर लोगों को योग अपनाने का संदेश दिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी जूनागढ़ किले में सामूहिक योगाभ्यास किया। अधिकारियों और जवानों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। जिले में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आम जन को राहत पहुंचा रहे हैं। शिविरों में लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भूमि संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रमाण पत्रों और लोगों की अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। रामसरा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में घुमंतु सासी समाज के कुछ परिवारों को निशुल्क आवासीय भूखंड के पट्टे प्रदान किए गए। वर्षों से स्थायी आवास के अभाव में जीवन यापन कर रहे इन परिवारों को अब अपना घर बनाने का आधार मिल गया है। लाभार्थियों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत के प्रति आभार व्यक्त किया। उधर पशुपालकों के लिए भी सेवा शिविर उपयोगी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कई पशुपालकों ने अपने दुधारू पशुओं का बीमा कराया। पांचू क्षेत्र के बंदड़ा गांव में आयोजित शिविर में पशुपालकों को योजना की जानकारी दी गई और मौके पर ही बीमा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों, जैविक संसाधनों के उपयोग और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। कृषि विभाग द्वारा जिले में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए कृषि सखियों और प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे गांव-गांव तक इसकी जानकारी पहुंचा सके। जल संरक्षण को लेकर भी जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, बारिश के पानी का संचयन और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुई। लोगों को पानी के संरक्षण और जल स्रोतों की देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला परिषद परिसर में एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधरोपण किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से श्री डूंगरगढ़ में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े पात्र परिवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी रो 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए बेगाई खिलौना बैंक शुरू करया जावेला। और देश माए नहना और दूर दराज रा शहरा री जनता ताई पासपोर्ट रो सुविधा पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्रा रा नेटवर्क माए लगातार बढ़ोतरी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर विधानसभा हलका माए विकास रा 631 करोड़ रुपये बत्ता खर्च वाला कामा री शुरुआत कीनी और पूरा भिया काम जनता ने सौंपया। ई मौके राखी ज्या कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री नालियां री सफाई सारू सुपर सकर मशीन कचरो भेड़ो करण री नुवी मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन ने रवाना कीनी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 रा बारा माए जाग जगावन रा मकसद ब्रांडिंग ऑटो रिक्शा नई हरी झंडी बता रवाना कीना। श्री शर्मा पात्र लोगां ने जमीन रा हक वाला स्वामित्व कार्ड ही दीना। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री कहो कि सरकार राजधानी जयपुर रा विकास सारू लगातार काम कर रही है। वह बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत करेला।
1: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहाँ आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
0: शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरां रो जिक्र करता थका मुख्यमंत्री कहो कि ऐ शिविर जनता री परेशानियां तुरंत आगीकरण रा जरिया बन रहा है।
1: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
0: कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जयपुर रे सांसद मंजू शर्मा समेत जनता रा कई नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मारा रहवास माथे अहलकारा सागे मीटिंग कर पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम रे प्रगति रे बारा माए विगतवार जानकारी लीनी। मीटिंग में श्री शर्मा कहो कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान देश री ऊर्जा हिफाजत रो मजबूत खंभो बनवा सागे प्रदेश रो ग्रोथ इंजन साबित हुएला। राज्य रा आंगनबाड़ी केंद्र माए 3-6 साल उम्र ताई रा बच्चा सारू शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रो खास अभियान चलाई चियो है। महिला और बाल विकास विभाग री ओर 5 जुलाई ताई चलाया जावन वाला ई अभियान रा तहत आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक खोलन सागे प्रवेशोत्सव और पौधा रोपण रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा निदेशक वासुदेव मालावत बतायो कि 30 जून ताई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकारी मदद घर घर जार खिलौना बैंक री जानकारी दी जावेला। इस आगे 3-6 साल ताई रा स्कूल नी जा रहा बच्चा री पछाण कर वारा मायता ने 1 जुलाई ने आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक री शुरुआत रा कार्यक्रम सारू न्योतो दियो जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग रा कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े शिष्टाचार भेंट कीनी। आयोग रा सदस्य केसरी सिंह ने हाल ही माए कार्यवाहक अध्यक्ष री जिम्मेदारी दीरी जी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI मई 2026 माए लीरी जी CA इंटरमीडिएट परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। परीक्षा माए

0: अम्बिवलीरा शार्दुल शेखर विचारे अव्वल रहा, अभिनव सतीश दूजी और तीर्थ जैन तीजी ठौड़ माथे रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। बोर्ड रा अध्यक्ष आलोक राज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा रो मुख्य परिणाम रो ऐलान ही आज जारी भेवन रा आसार जताया। वे बतायो कि आज भी मीटिंग में वीडीओ परीक्षा रा अंतिम परिणाम ने मंजूरी दे दी जी। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। वो दिन साल 1967 में पासपोर्ट कानून लागू हेवन री याद माई मनायो जावे है। इनरो खास मकसद सुरक्षित पासपोर्ट, आसान सेवा और मजबूत जनता रा संकल्प रो दोहराव है। पासपोर्ट सेवा दिवस रे बारा माई पेश है समाचार कक्षु सालेहा गाजी री रपट।
1: पासपोर्ट सेवा केंद्रा और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रा री पहुंच लगातार बधाई जा रही है। जिनो नाना और दूर दराज रा शहरा रा लोगा ने ये आसानी पासपोर्ट मिल रहा है। हाल ही माए व्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन माए विदेश मंत्री एस जयशंकर बतायो कि देश माए पासपोर्ट री बढ़ती तादाद उम्मीद माए बढ़ोतरी रो दर्शाव करे है। माली साल 2025-26 माए पासपोर्ट री तादाद बधर 138 लाख वेगी। वे बतायो कि पासपोर्ट मुहैया करावन री प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। आ विकसित भारत बनावन रा काम माए प्रेरणा देवन वाली खास ताकत रा तौरों काम कर रही है।
0: फौज री ओर श्री गंगानगर जिला रा सरहदों लाग्योड़ा संगराना 24 और 25 आरबी गांव माए जनता माए जाग जगावन और सुरक्षा सहयोग मजबूत करन रा मकसद वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाई चियो है। इन जरिए शंका लायक हलचल री जानकारी फौज ताई पुगावन री प्रक्रिया बतावन और आपदारी भगत जनता और फौज बीच मदद बधावन रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। वो कार्यक्रम 30 जून ताई चालेला। डीग जिला रा कामा हलका माए आज एक तेज जा रही कार करीब 10 जना ने टक्कर मार दीनी। कार री फेंट माए आया लोग तीर्थराज विमल कुंड री परिक्रमा कर और पैदल जा रहा हा। जख्मी लोगा ने कामारा सरकारी अस्पताल माए भर्ती कराई चिया जठौ घना जख्मी 5 जना ने भरतपुर रा आरबीएम सफाखाना माए रेफर कर दिया चिया। कार चलावन वालो मौका फरार फेंक्यो। अरब मौसम प्रदेश का कई हलका माए चौमासाओं पहली री बिरखा वेवणु गर्मियों साता मिली है। जल संसाधन विभाग को मिली जानकारी रे मुजब ई महीना माए हाल ताई राज्य रा 3 जिला माए बत्तो, 3 माए सामान्य और 9 जिला माए सामान्य कम में बरसियो। मौसम विभाग आज ही 20 जिला माए गरज चमक सागे बरसात फेवन सारू चेतायो है। महकमारे मुजब उदयपुर रे अलावा बाकी संभागा माए काली कठे कठे आंधी बारिश रा आसार है। 28 जिला माए येलो और श्री गंगानगर चूरू और बीकानेर जिला माए बरसात रो ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है। ई बीचे आज हनुमानगढ़ माए दोपहरा पाछे मौसम पलट गयो। माणी खबर नवीस बतायो के वठे मोकड़ो धूलो उड्यो।
2: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी व कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि बिरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोट मूंग, ग्वार, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: आज बूंदी जिला रो 785वां स्थापना दिवस मनाई चियो। ई मौके जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग री ओर भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। ऐतिहासिक गढ़ पैलेस माए शहनाई बजावन और गणेश पूजन रा कार्यक्रम राखी चिया। स्थापना दिवस रा सिलसिला माए देसी परदेसी सैलानिया ने खास स्मारका माए मुफ्त दाखिलो दियो चियो। हॉकी इंडिया 5 और 14

0: 14 जुलाई ताई ब्रिटेन रा दौरा सारू 24 सदस्यों वाली जूनियर महिला टीम रो ऐलान करती नो है। खेदेम शिलेमा चानू टीम री कप्तान बनाई ची है। भारत री टीम नुआ कोच टिम वाइट री अगुवाई माए जूनियर एशिया कप समेत आवती अंतर्राष्ट्रीय होड़ा री तैयारी रा सिलसिला माए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड माए 7 मैच खेलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून न विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथ 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजु सुन ले राव सा 1-800-117-800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए बेगाई खिलौना बैंक शुरू करिया चावेला। और देश माए नाना और दूर दराज रा शहरां री जनता ताई पासपोर्ट रो सुबितो पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्रां रा नेटवर्क माए लगातार बढ़ोतरी। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो कियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनिए। सगला किसान परिवारा ने सज्जन भाई की घनी घनी और मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, आज थारा कागत और व्हाट्सएप वाला संदेश और सागे सागे मेल जिका थे अबार कर सको हो तो मेल को आपनों टाइम हो 7 बजे से बाद में तो अभी थे मेल कर सो तो तारा मेल जरूर शामिल हो जी। और मेल को पतो जे न है तो लिख लियो AIRSURATGARCHOUPAL@gmail.com airsuratgarhchopal@gmail.com। तो इन पर थे आभार भी मेल कर सको हो और कागत भी थारा पुगता हो गया है तो पहले आप कागतों का उथला देवा। तो पहलो कागत अपना कहना है टोडिया सर नोरशू और मांडियो है बगराज पारिक बिमला शिशपाल सुमित्रा कविता मनीषा विवेक लोकेश और अंगो सगलो परिवार। लिखे है कि सगला जी का कार्यक्रम है माना बहुत ही अच्छा लगा है और खेती के बारे में पशुधन के बारे में बाजार भाव और मौसम की जानकारी और नाटक पेश करो ये भी अच्छा लगे और सागे सागा सगला ने राम रूमी भी दिया तो थाने भी घनी घनी रामा श्यामा जी। आगलो कागत पूग तो होया गाँव भड़ भूंजी छू और लिखे है कि माने बहुत ही अच्छा लगे कार्यक्रम और नाम जिका है मांडिया है सुषमा मंजू बबीता ओम प्रकाश और आंगो सगलो परिवार और मांडिया है कि सगला ने घनी घनी राम राम और सागे सागे जी का गीत और भजन माना सुनाओ वह बहुत ही अच्छा लगे तो थाने भी घनी घनी राम राम जी। और बिल्कुल जिका गीत अच्छा अच्छा गीत और भजन जिका है आप रोज ये सुन छा और थे रोज लगो लोग कार्यक्रम सुनता रहो और कागत मानता रहे करो या संदेश भेज दे करो। मंडी गोलू वाले छूँ ब्रिजलाल चौहान नीरज कुमार चौहान लिखे कि कार्यक्रम जो का माना बहुत ही अच्छा लगे है बहुत दया आवे है और जिकी थे जानकारी दो वह हमारे बहुत ही काम आवे तो बिल्कुल था अच्छी अच्छी जिकी जानकारी है वह थारे तो ये पूर्ति करती रहेंगे चाहे वह मौसम वाली है चाहे बाजार का भाव है या और बाकी भी खेती पाती से संबंधित जिकी जानकारी है तो भी जी नई नई जानकारी हो सी वे थारे तीन जरूर पूर्ति कर देंगे आप।

ओ कागत किसान भाइयों पूगतो हुए है रेलवे कॉलोनी मानगढ़ जंक्शन छू और मांडियो है जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जी एस नायक शोभा नायक और सगड़ो परिवार लिखे कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लागे है और मैं लगो लग कार्यक्रम सुना हाँ बिल्कुल जी थारो कागत जी को है थारो कागत भी लगो लग जी को पुगतो रेवे थे सुनो जदि थारो कागत देखो पुगतो होवे और थारो कागत शामिल भी होवे तो यही आगे सारू भी कागत जी को है जरूर लिख देख रो और जरूर मांडे करो और कार्यक्रम में के चीज़ अच्छी लगी के सुन में अच्छो लाग्यो और कोई चीज़ ना भी अच्छी लगे तो बा भी जरूर मांडे करो और सुझाव भी दे दे करो सागे सागे तो कार्यक्रम जी को आप और अच्छे तरह थारे ते पुगतो कर सा गांव दौलतपुर है श्री गंगानगर सु शोलाल जी बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित हेमंत लिखा है कि माने कार्यक्रम जी का बहुत ही अच्छा लगा है और कार्यक्रम जी को मैं लग लग सुना और जानकारी दो वह बहुत ही अच्छा लगा और जिसका भजन सुनाओ बे तो बहुत ही अच्छा लगा है बिल्कुल सर शोलाल दादा को कागज तो कदी आज तक यहाँ हुए ही कोनी भी कोई टल जाए कदी लगो लग आवे बिल्कुल रंग तो कागज जे कुदरती रे जाए मारूँ तो मिनट में ओड़ मोर दे दे तो बिल्कुल दादा थारो कागज जी का शामिल हो गया है और बिल्कुल थे थारो आशीर्वाद है वो यहाँ कागज में लिख के और भेजता रहे करो गांव खेरिका सिरसा सों इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरगुन हनीलोट और दर्शन लोट और मसीता डब वाली सों दर्शन लोट और मूर्ति रानी लिखा है कि कार्यक्रम जी को माने बहुत अच्छा लगा है और कार्यक्रम में जिकी थे जानकारी देव खेती से संबंधित जानकारी है वह बहुत ही अच्छी लगा और काम भी बहुत आवे बिल्कुल सर खेती पाती के काम में देखो नई नई तकनीक आन लाग रही है और वह तकनीक जिकी है वह बहुत ही कामयाब भी है देखो भी मैं एक तो अपने मेहनत की तो बचत तो हो ही हुआ है सागे सागे खर्चे की बचत हो और बीच में पैदावार जिकी अच्छी हो और काम भी जल्दी जल्दी हो जाए तो यहीं करके जिकी नई नई तकनीक है नई नई जिकी जानकारियां हैं वे जरूर थारे ताई अंत ही और अपन थारे ताई पूर्ति कर देंगे जिको अपना अपना खेती पाती का काम धंधा है वे अच्छी तरह अपन कर लें। मुड़ोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा बिमला इंदौरा गैरी इंदौरा विकास इंदौरा प्रियंका इंदौरा रमन इंदौरा रितु इंदौरा और भविष्य खन्ना मिशेल खन्ना किंसुक खन्ना और दीपांशी इंदौरा लिखा है कि चौपाल प्रोग्राम पेश करने वाला ने सगला ने प्यार भरी नमस्कार थाने भी घनी घनी राम राम जी और ऐसा आगे सागे लिखा है कि जिका नाटक थे सुनाओ वह बहुत ही अच्छा लगा है और टेमो टेम जी की जानकारी दो वह भी अच्छा लगा है और बाकी जिका भी सगला सुन वाला भाई है बने भी है रामा श्यामा देवे बिल्कुल जा सगला की तरफ से थाने भी घनी घनी रामा श्यामा और बिल्कुल कार्यक्रम ये सुनता रहे करो और कागज जिका है जरूर जी मांड दे करो और बिल्कुल किसान भाइयों आपा और भी थारा जी का संदेश आयडा है बांगा भी उथला देश हाँ पणा बापा पहली एक सुन लिया भजन आओ सुना।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: सुनियो सा अपन भजन और अब व्हाट्सएप पर जी का थारा संदेश आएड़ा है। संदेश अपना कने पुगत हो हनुमानगढ़ टाउन छू और संदेश भेजो है रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। सारों पहली तो लिख है कि प्रोग्राम पेश करने वाला ने सगला ने राम राम सा, थाने भी घनी घनी राम राम जी। और ए मांडा है कि चौपाल जी को है मैं बारी बारी सुना हाँ और बहुत

किसान भाइयों, संदेश आपने कहना गांधी ग्राम छू भेजो है और मांडियो है प्रवीण सोनी और लिखा है कि पत्रोत्तर पेश करने वाला ने प्यार भरी नमस्कार थाने भी घनी घनी रामा श्यामा जी। और ऐसा के सागे मांडा है कि कार्यक्रम जो बहुत ही खास होवे चौपाल और जानकारी छू भरपूर होवे। बिल्कुल सा आप अच्छी अच्छी जी की जानकारी है बिल्कुल थारे ते ये पूर्ति करता रहेंगे थे भी जो है आपको संदेश जरूर भेज दे करो। पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ छूँ और मांडियो है बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। लिखा है कि सूरतगढ़ छूँ जिका भी कार्यक्रम प्रसारित हुआ है वह बहुत ही अच्छा लगे। गीत गंगा है आपकी पसंद है सदाबहार नगमे गोरबंद और चौपाल में जिकी खेती की जानकारी दो वह बहुत ही अच्छी लगे है। और सफल जानकारी देने खातर आकाशवाणी सूरतगढ़ ने कोटि कोटि बधाई भेजी है। बिल्कुल सा थारो घणो घणो धन्यवाद बधाई देने खातर और थाने भी घनी घनी बधाई कि थे कार्यक्रम जो अलग अलग सुनो और कार्यक्रम थाना अच्छा लगे और बिल्कुल अलग अलग सुनता रहे करो और प्रतिक्रिया जरूर बा संदेश में मांड दे करो। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश हूँ मांडियो है भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ और ऐ सगड़ा ने रामा श्यामा दिया थाने भी घनी घनी रामा श्यामा जी। और सागे सागे मांडा है कि खेती और पशुपालन छूँ संबंधित जी की जानकारी है और लोकगीत है चौपाल कार्यक्रम में मैंने बहुत ही अच्छा लगे और जानकारी जी की अब बहुत ही ज्ञानवर्धक हो। बिल्कुल सा अच्छी अच्छी जी की जानकारी है जी छूँ कि आपने कोई खेती पाती का वहाँ फायदा हो अपने तो बिल्कुल यही तरह की जानकारी है। और बाकी अपना पशुपालन जी का देखो खेती से जुड़े काम धंधा है तो बाकी भी जानकारी आप जरूर आप पूर्ति करता रहे। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ छूँ वेद मिड्डा और अलका मिड्डा मांडा है कि सबसे पहले तो सगला ने नमस्कार रामा श्यामा और चौपाल सुनने वाले सगला श्रोता ने और जिका उद्घोषक बंधु है बाने प्यार भरी नमस्कार थाने भी घनी घनी नमस्कार जी घनी घनी राम राम। लिखा है चौपाल मारो पसंदीदा कार्यक्रम है और मैं इन्हें नियमित रूप से सुना और टेमो टेम जी की जानकारी दो वह बहुत ही अच्छी लगे जी। हाँ बाजार भाव है मौसम की जानकारी है और फसलों ने कीटनाशक को चुनाव है या फिर जिका कृषि विशेषज्ञ है बंगा जी का वार्तालाप सुनाओ वह बहुत ही लाभदायक हो है। और गीता रे गजरा गा राजस्थानी गीत सुनाओ वह बहुत ही मधुर हो है और बहुत ही अच्छा लगे। बिल्कुल आपा अच्छा अच्छा गीत और भजन जिका है बिल्कुल कार्यक्रम में ये सुनता रहे छा और थे भी कार्यक्रम जो है सुनता रहे करो। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश छूँ सत्येंद्र कुमार चंसोलिया लिखा है कि सगला ने प्यार भरी नमस्कार ई सुलावा कोई प्रतिक्रिया मांडी को नहीं है तो बिल्कुल जी थाने भी घनी घनी नमस्कार घनी घनी रामा श्यामा। और सत्येंद्र जी आपने थे प्रतिक्रिया जी की है वह जरूर संदेश में मांडी करो आगे सारू कि कार्यक्रम में थाने के चीज़ें अच्छी लगी और कोई सुझाव देना हो तो वो भी जरूर दे करो। बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ छूँ फाजिलका छूँ रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा सगला ने प्यार भरी नमस्कार देवे है थाने भी घनी घनी रामा श्यामा जी। चंडीगढ़ छूँ सतीश अनेजा और विमला अनेजा लिखा है कि कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है और चौपाल कार्यक्रम जो है आपकी खूबसूरती से बहुत ही लोकप्रिय हो गया है राजस्थानी सभ्यता ने दर्शाने वाला कार्यक्रम और बहुत ही आनंद आवे है। और लेरला दिना जी को नाटक सुनायो आखिरी चिट्ठी सुनो भी हूँ बहुत ही भावुक कर गयो और देश को एक फौजी की जिकी मोहब्बत दिखाई भी शू आँख हम पानी आ गयो। और आकाशवाणी बधाई की पात्र है इस तरह मेहनत करके नाटक तैयार करे जिस चूँ कि अपना जिका सुनने वाला जिका जवान है बने बहुत ही प्रेरणा मिले। बिल्कुल सा आप और भी अच्छा अच्छा नाटक जिका है थरते जरूर पूछता कर सें जरूर सुना सें थे यही हौसला अफजाई करता रही और भी अपने चंडीगढ़ का निके एक रहनी के

लाशेरी, यहाँ लाशेरी देश हो तो ईसा और अच्छा अच्छा नाटक जी का और थाने जरूर सुना छा। सप्त रंग श्रोता परिवार कुम्हार गली श्री रामपुर छू अशोक दले परिवार लिखे कि कार्यक्रम जी का सूरतगढ़ छू प्रसारित हो है, गीत गंगा है आपकी पसंद है, सदाबहार नगमा गोरबंद चौपाल में जी की खेती की जानकारी दो बहुत ही अच्छी लगे और सफल जानकारी देने खातर आकाशवाणी सूरतगढ़ ने कोटि कोटि बधाई। थाने भी घने घने धन्यवाद जी, कार्यक्रम ये सुनता रहे करो, जरूर जी की है जानकारी थारा ते यहाँ पर पूर्ति करता रहेगा और थारा मेल भी पूछता हो रहा है, मेल भी थारा जरूर आप बांट छा, पर पहले आप सुन लिया एक गीत लियो सुनो सा।

है कि कार्यक्रम गीतारो गजरो है वो भी दो आवाज में पेश करे करो, और सागे सागे जैविक खेती पर नवीन जी सिसोदिया की कान्हा राम जी भुआल सु बातचीत वह बहुत ही लाभदायक की, और थारी बोली और थारो प्रोग्राम पेश करने को अंदाज माना बहुत ही निरालो लागे, बहुत ही आनंद आवे, और सागे सागे लिखे है कि जी की जानकारी दो वह बहुत ही फायदेमंद होवे। बिल्कुल सा अच्छी अच्छी जी की जानकारी है वह बिल्कुल थारे तीन आप पूर्ति करती रही सा। गाँव गंधेली छू पालाराम सियाग रमेश संदीप विमला सियाग मोनिका भावना और रंग पोतो जी को है राघव लिखा है कि थारो कार्यक्रम जो का बहुत ही सराहनीय है, और पेश करने वाला ने हमारी तरफ से रामा श्यामा थाने भी घनी घनी रामा श्यामा जी। प्रोग्राम की सारी बात अच्छी लगे है, और मांडा की कृषि संबंधी फसल भाव जानकारी दे वह बहुत ही बढ़िया लगे है। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा छू बिल्लू सिंह चिंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार चिंडालिया बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया नरेंद्र कुमार चिंडालिया लिखा कि दो आवाज में चौपाल माने बहुत ही बढ़िया लगा है, और आकाशवाणी परिवार ने हमारी तरफ से घनी घनी बधाई, थाने भी घणो घणो धन्यवाद जी। लखवाड़ी हेड छू भंवरलाल कृष्णा विशाल राजबाला ममता नव्या लक्षिता मोहम्मद रफीक महावीर लोरा मुकनाराम लिखा कि पेश कस सुनी बहुत ही चोखी लगी, और चौपाल मारो हिवड़े से जुड़ेड़ो है, चौपाल में गीत भजन नाटक खेती बाड़ी की जी की जानकारी दो वह बहुत ही बढ़िया लगे। बिल्कुल सा अच्छी अच्छी जानकारी जी की आप जरूर थारे तीन पूर्ति करता रहेगा। गांव बारह टीके रायसी नगर छू भगत भारती कृष्णा भारती विशेष भारती और रंजना भारती लिखे कि चौपाल की शुरुआत जी की है गजानन भजन छू करी माने बहुत ही अच्छी लगी, और चौपाल मारे हिवरे को हार है और थारे मुंड है हूँ थारा जी का मीठा बोल है बे माने इया लागे जिया जाल रे रूंख छू पिल्ला झड़े। बिल्कुल सा देखो थे भी जी की बातड़ी है खूब जोर की मांडी ऐसा, और ये मेल जी के जरूर मारता रहे करो। डूंगरपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर छू सिंगर भूमेश परिहार लिखे कि कार्यक्रम माने बहुत ही अच्छा लागे है, और सूरतगढ़ आकाशवाणी का जी का सगड़ा कार्यक्रम में जरूर सुनूँ। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जी थारो। और रघुनाथपुरा छू लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी लिखे है कि आदरणीय पेश करता जी ने घनी घनी रामा श्यामा थाने भी घनी घनी रामा श्यामा जी, और ए मांडे की लारले दिना गीता रो गजरा में लोक भजन और गीत घणा दायाया मनोज स्वामी जी जी की कविता पाठी हेवड़े छू दाया आई, और विनोद स्वामी जी चौपाल में गीता रो गजरो बहुत जोरदार लाग्यो और माने बहुत दया आवे। बिल्कुल सा गीता रो गजरा में अच्छे अच्छे जी का थारा फरमाइशी जी का गीत भजन है भी जरूर थाने सुनावांगा। नोर जिला हनुमानगढ़ छू नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमांशु सुथार और गांव बीरकाली छू राम कुमार सुथार दिलीप कामड़ बेगरा स्याग कालू खान नजाकत अली गुटे खां छगन सिंह तंवर और कालू मिस्त्री ए मांडे है कि मारी तरफ छू घनी घनी रामा श्यामा थाने भी घनी घनी रामा श्यामा जी। लिखे है कि मैं चौपाल का नियमित पक्का श्रोता हाँ, और मेहबा का नाम भी जरूर भेजा ए जिका नाम मैं भेजा है एंड्रॉयड फ़ोन चलावे कोनी तो आगे मैं नाम भेजा। बिल्कुल सा नाम थे भेज दे करो, और ऐसा के सागे मांडे कि चौपाल में जिकी जानकारी दो वह बहुत ही अच्छी लगे, और बिंगो में बहुत फ़ायदा उठावा, और सूरतगढ़ का जिका है प्रोग्राम में सगला दिन सुना जोरू का गुलाम जी का नाटक बहुत ही पसंद आयो, और रमेश चावरिया जी की प्रस्तुति जी की माने बहुत ही अच्छी लगी, और विनोद स्वामी परलिका के जिको काव्य पाठ हो वो भी बहुत बढ़िया लाग्यो, और सागे सागे जी का श्रोता है वन रामजस वाल्मीकि भगत सही राम धन्ना सर और धर्मपाल भारती जी का भजन जी का बहुत ही माने पसंद आवे, कालू राम प्रजापति का गीत भी बहुत अच्छा लगे है, और सागे सागे मांडा है कि सगली आकाशवाणी टीम ने बहुत बहुत जी की बधाई दी है। थाने भी घने घने धन्यवाद जी। कार्यक्रम जी को लगो लग सुनता रहे करो, और करशा बात चिता और पर पहली सुना आप एक गीत लियो सुनो सा।

किसान भाइयों सुनो आपां गीत और बाजार भाव वाली पानड़ी पूगती है। सूरतगढ़ मंडी में गेहूं का भाव रहा 2380 रुपया और ग्वार बिक्यो 5500 ले गया और उनचा बोली लागी 5628 रुपया। और मौसम की बात करा तो मौसम में आने वाले एक दो दिन में देखो बिरखा की संभावना और आंधी की संभावना भी जताई है। तो काम धंधा आपा मौसम के हिसाब से आप पहली शू करा तो अब तो कार्यक्रम को टेम हो गया है। तो आज को कार्यक्रम इतो ही सज्जन भाई ने दो थे भाग्या। राम राम साह राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आपने हत्या फिल्म का गीत सुना, मोहम्मद अजीज और सपना मुखर्जी की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे, संगीत बप्पी लहरी का था। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और गीत। फिल्म का नाम है रामावतार। अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में।

आपने फिल्म रामावतार का गीत सुना। मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ें थीं। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से।

आज की फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं। गुलशन कुमार की इस फिल्म के संगीतकार हैं नदीम शरवण, गीत समीर का आप सुन रहे हैं, आवाजें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की।

आपने समीर का लिखा हुआ गीत सुना, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। इस फिल्म का संगीत नदीम श्रवण का है। ये वो नाम है जिनका संगीत पद की हुई बहुत सारी फिल्में सुपरहिट हुई थी, और आज की इस फिल्म में इनके साथ गीतकार हैं समीर, फैज अनवर, अजीज खान और रानी मलिक। मुख्य जो गायक स्वर हैं उनमें कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, अभिजीत भट्टाचार्य, देवाशीष दासगुप्ता और बाबा मेहता। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और नगमा।

अभी आपने फैज अनवर का लिखा हुआ गीत सुना। दोस्तों, दिल है के मानता नहीं 1991 की महेश भट्ट द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी फिल्म है। यह गुलशन कुमार द्वारा निर्मित की गई थी और पूजा भट्ट की प्रमुख भूमिका वाली पहली फिल्म थी। आमिर खान द्वारा प्रमुख रूप से भूमिका निभाई गई। अनुपम खेर, वीरेंद्र सक्सेना और टीकू तलसानिया द्वारा सहायक भूमिका निभाई गई, जबकि दीपिक तिजोरी ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। इस फिल्म के लेखक रॉबिन भट्ट और शरद जोशी हैं, निर्माता गुलशन कुमार, और यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई। संगीतकार नदीम श्रवण की संगीत निर्देशन की यह फिल्म थी। फिल्म एक बॉक्स ऑफिस सफलता थी और इसने आमिर खान को प्रमुख फिल्म सितारे के रूप में मजबूत किया, और इसके साथ साथ पूजा भट्ट को भी का कैरियर भी आगे बढ़ाया। वैसे ये फिल्म 1956 की बॉलीवुड फिल्म चोरी चोरी की अनौपचारिक रीमेक है। लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का एक और नगमा।

अनुराधा पौडवाल की आवाज को आपने सुना, समीर के बोल थे, संगीत नदीम श्रवण का, और आप सुन रहे हैं फिल्म दिल है के मानता नहीं के कुछ गीत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से।

दिल है के मानता नहीं। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म के गीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए अब हम सुनते हैं हिंदी व अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से, अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। FIH प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। हॉकी इंडिया ने ब्रिटेन में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा और ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी, 16 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से, जहां हर दिन फीफा विश्व कप में रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर, बोस्निया हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप के मुकाबले में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने अगले राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल दूसरे हाफ में डेनियल मुनोज ने किया। मुनोज ने एक डिफ्लेक्टेड शॉट पर गोल दागकर कांगो के मजबूत डिफेंस को भेदा। कांगो की मजबूत डिफेंस को देखकर एक समय लग रहा था कि ये मुकाबला ड्रॉ रहेगा, लेकिन मैच के 76वें मिनट में आखिरकार मुनोज को सफलता मिली और उन्होंने कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिलाई। कोलंबिया ने अपनी लीड को अंत तक बनाए रखा। इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने ग्रुप में 2 मुकाबले जीतकर टॉप 2 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। ग्रुप एल के मुकाबले में क्रोएशिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पनामा को 1-0 से हरा दिया। क्रोएशिया के खिलाफ मिली हार के साथ ही पनामा के अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीद समाप्त हो गई है। क्रोएशिया ने ये अहम जीत टीम के स्टार खिलाड़ी लुका मोड्रिक के 200वें मैच में हासिल की। पहले हाफ में पनामा ने क्रोएशिया के मुकाबले ज्यादा बेहतर खेल दिखाया। 23वें मिनट में पनामा को गोल करने का एक शानदार मौका मिला था, जब जोस लुइस रोड्रिगेज ने जोरदार हेडर लगाया। हालांकि क्रोएशिया के गोलकीपर डोमिनिक लेवाकोविच ने शानदार बचाव करते हुए गोल बचा लिया। मुकाबले के 54वें मिनट में क्रोएशिया 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रहा। जोसेफ स्टेनिसिक के दाईं ओर से आए शानदार लो क्रॉस को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए एंटे बुदमिर ने गोल में तब्दील कर दिया। इस जीत के साथ ही क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है।
2: क्रोएशिया आर अप एंड रनिंग एंड आर इनटू कंटेंशन इन ग्रुप एल। पनामा आर

0: team with a game to spare.
1: ग्रुप एल का एक और मुकाबला इंग्लैंड और घाना के बीच गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लैंड ने मैच में पहला बड़ा मौका 13वें मिनट में बनाया जब डेक्लान राइस की लंबी दूरी की फ्री किक गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई। पहले हाफ में जूड बेलिंगहैम का एक शॉट घाना के दो डिफेंडर ने ब्लॉक किया। वहीं राइस ने नोनी मडुके के क्रॉस पर हेडर लगाया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मैच के अंतिम मिनटों में इंग्लैंड ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी लेकिन अंत में दोनों टीम को एक एक अंक से ही संतोष करना पड़ा। ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। ह्यूस्टन स्टेडियम में मिली पुर्तगाल की जीत के नायक स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे। उन्होंने मुकाबले में 2 गोल किए। पुर्तगाल ने इस जीत के साथ ही राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। टीम के 2 मुकाबलों के बाद अब 4 अंक हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ ने भी 1-1 गोल दागा। पुर्तगाल ने शुरुआत से ही मुकाबले का शानदार आगाज किया। मैच के 6वें मिनट में ही रोनाल्डो ने अपनी क्लास दिखाई और टीम

0: राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। टीम के दो मुकाबलों के बाद अब 4 अंक हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ ने भी एक एक गोल दागा। पुर्तगाल ने शुरुआत से ही मुकाबले का शानदार आगाज किया। मैच के 6वें मिनट में ही रोनाल्डो ने अपनी क्लास दिखाई और टीम के लिए पहला गोल दागा और टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। इस गोल के साथ ही रोनाल्डो ने ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। वो 6 विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पुर्तगाल की बढ़त को मैच के 17वें मिनट में ही नूनो मेंडेस ने दोगुना कर दिया। नूनो ने फ्री किक का भरपूर फायदा उठाया और मैच का दूसरा और अपना पहला गोल दागा। मैच के 29वें मिनट में उज्बेकिस्तान के लिए अजीजनोज गनीव ने एक शानदार गोल किया, लेकिन फाउल होने के कारण इसे अमान्य करार दे दिया गया। इसके बाद मैच के 39वें मिनट में रोनाल्डो ने अपना दूसरा और मैच का तीसरा गोल दागा। रोनाल्डो के इस गोल के दम पर पुर्तगाल ने पहले हाफ का अंत 3-0 की बढ़त के साथ किया। दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान के गोलकीपर नेमातोव गलती से अपना ही गोल कर बैठे, जिसके चलते पुर्तगाल की बढ़त 4-0 हो गई। मैच के 87वें मिनट में राफा लियाओ ने 5वां गोल दागा और पुर्तगाल की धमाकेदार जीत पर मोहर लगा दी।
1: It's Portugal on the surge with Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. He's done it again, from setback to statement. Portugal 5, Uzbekistan 0.
0: Mukesh Kumar, Sports Camp.
2: और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज को मात दी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने टूर्नामेंट में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज को 3 गेमों के कड़े मुकाबले में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। चोट से उबरकर वापसी कर रही त्रिशा ने अपनी जोड़ीदार गायत्री के साथ मिलकर स्पेन की जोड़ी को 21-12, 14-21, 21-13 से 51 मिनट तक चले पहले दौर के मुकाबले में पराजित किया। भारतीय जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की सुमीरे नाकाडे और मियू ताकाहाशी से होगा। त्रिशा और गायत्री ने मैच की शुरुआत मजबूत की और पहले गेम में 8-3 की बढ़त बना ली। स्पेन की जोड़ी ने वापसी की कोशिश करते हुए लगातार 4 अंक हासिल करते हुए अंतर को कम करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जोड़ी ने फिर से दबदबा बनाते हुए 17-11 की बढ़त बनाई और गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में पाउला और लुसिया ने बेहतर खेल दिखाया और 11-7 की बढ़त बना ली। भारतीय जोड़ी ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन स्पेन की जोड़ी का मुकाबला बराबरी पर रखने में सफल रही। निर्णायक तीसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने फिर से 11-6 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। इस जोड़ी ने इसके बाद अपनी लय बनाए रखी और बिना ज्यादा परेशानी के मैच अपने नाम कर लिया। पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर में रौनक चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। उन्होंने पहले फ्रांस के एनोगार्ट रॉय को 21-19, 21-16 से हराया, फिर चीनी ताइपे के कुओ कुआन लिन को 13-21, 21-14, 21-10 से मात देकर आगे बढ़े। चौहान के सामने अब शुरुआती दौर में हमवतन एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम की चुनौती होगी। 5वीं वरीयता प्राप्त किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में अपने ही देश के सनीथ दयानंद से भिड़ेंगे। भारत की ओर से महिला सिंगल्स में भी मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी। इसमें रक्षिता श्री संतोष रामराज, श्रियांशी वली शेट्टी, अनमोल खरब, देविका सिहाग, तानिया हेमंत, आकर्षि कश्यप व तन्वी शर्मा हिस्सा लेंगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
4: युवा भारतीय टीम की अगुवाई कप्तान खैदेम शिलेमा चानू करेंगी। निधि और एंगिल हर्षारानी मिन्स टीम की गोलकीपर होंगी। डिफेंसिव यूनिट में पूजा शाहू, सुप्रिया मधु, एफ लालवी अक्सियामी, लालने ईपुई और पार्वती टोपनो शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान चानू, तनुजा टोप्पो, सुप्रिया कुजूर, पूजा मलिक, विनिमा धन, गीता यादव, रोशनी आइंद और तनुश्री दिनेश कुडू को शामिल किया गया है। फॉरवर्ड लाइन में सुखवीर कौर, शशि खासा, लालरिन पुई, निशा मिंज, पूर्णिमा यादव, काजल सानिका, चंद्रकांत माने और कृष्णा शर्मा को जगह दी गई है। 9 दिन का ये एक्सपोजर टूर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड सीनियर महिला टीम के

0: खिलाफ दो मैचों से शुरू होगा। इसके बाद लीले शॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड और बेल्जियम की साथी जूनियर टीमों के खिलाफ मैच होंगे। यह दौरा जूनियर एशिया कप और अन्य आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारियों का अहम हिस्सा है। इस दौरान खिलाड़ियों को विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलेगा, जिससे उनके खेल और आत्मविश्वास में सुधार होगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर FIH प्रो लीग के लंदन लेग के अपने पहले मैच में भारत ने एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दी। सुनते हैं इस मैच का हाल।
2: भारत के लिए अभिषेक ने 21वें, नीलाकांता शर्मा ने 24वें, सुखजीत सिंह ने 34वें और राजेंद्र सिंह ने 52वें मिनट में गोल किए। वहीं पाकिस्तान के तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले के 8वें मिनट में नदीम अहमद ने गोल करके पाकिस्तान को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की भारतीय टीम ने दूसरी क्वार्टर में जबरदस्त वापसी की। उन्होंने 2 गोल किए और फिर तीसरे और चौथे क्वार्टर में एक एक गोल करके मजबूत बढ़त बना ली। क्रेग फुल्टन की टीम ने मैच के अंतिम 10 मिनट में कुछ गलतियां की, जिससे पाकिस्तान को 2 गोल करने का मौका मिला। इसी के साथ जीत का अंतर तो कम हुआ, लेकिन मुकाबले ने एक रोमांचक मोड़ ले लिया। खेल के हर पहलू में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा। मैन इन ब्लू ने 30 बार सर्कल में प्रवेश किया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी केवल 9 बार ही ऐसा कर पाए। उन्हें 11 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जबकि पाकिस्तान को 8 मिले। हालांकि वे केवल 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल पाए, जबकि पाकिस्तान ने 3 गोल किए। इस जीत के साथ भारत ने FIH प्रो लीग के आखिरी 2 राउंड के लिए यूरोप के मौजूदा दौरे पर अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। रोटरडैम में हुए पिछले लेग में उन्होंने अहम मैचों में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी और मेजबान नीदरलैंड्स को हराया था। प्रो लीग के 13 मैचों में भारत की यह तीसरी सीधी जीत है। अब इस टीम के 13 अंक हो गए हैं। हरमनप्रीत सिंह की टीम ने एक मैच शूटआउट में जीता है, 2 मैच ड्रॉ खेले हैं और 7 मैच हारे हैं, जबकि पाकिस्तान ने अब तक अपने सभी 13 मैच गवाए हैं। इस जीत के साथ भारत वर्ष 2016 के बाद से सीनियर और जूनियर स्तर पर पाकिस्तान से नहीं हारा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात धैर्य और एकाग्रता वाले खेल निशानेबाजी पर। जर्मनी के सोहल में भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम जूनियर इवेंट में रजत पदक जीता। पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत टीम और मिक्स टीम स्पर्धाओं में लगातार अच्छे प्रदर्शन से भारतीय टीम पहले स्थान पर बरकरार है। वंशिका चौधरी और शिवा नरवाल की भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। शिवा नरवाल ने कल 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में रजत पदक और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक पर निशाना साधा। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में एक और रजत पदक जीता, जिसमें शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने मिलकर शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर फिनिश किया। भारत के अभियान को तब और मजबूती मिली जब प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिससे देश को चैंपियनशिप का 5वां स्वर्ण पदक मिला। 25 मीटर पिस्टल महिला जूनियर टीम स्पर्धा में अंजलि महेंद्र भागवत, परीक्षा गुप्ता और निथिला की तिकड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत 5 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्रिकेट पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड्स को भारत ने 95 रन से मात दी। ICC ने एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर रांची में छोटा नागपुर रॉयल्स ने झारखंड प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अब बात एथलेटिक्स पर। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी 100 मीटर बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति याराजी ने आज राष्ट्रीय अंतरराज एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन एशियाई खेलों का क्वालिफिकेशन मानक हासिल कर शानदार वापसी कर ली है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.ai

0: @gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक

0: सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSK अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं।

0: सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही

0: World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आपने पंकज उधास की गाई हुई कुछ गजलें सुनी। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 900

0: 18 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे चर्चा का विषय है।
1: चर्चा का विषय है
2: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
4: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
3: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
4: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
3: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
4: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
3: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
4: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को

0: उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा, वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था। तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा,
1: जी जी
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था।
1: जी
0: पांचवी जो कैटेगरी है, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर। इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड।

0: संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में, 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है?
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें?
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है, 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को, वो जहाँ भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी

0: स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत ज़रूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनवाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे ज़रूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्टपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी, 6th से लेकर 12th तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी,
1: हम्म

0: मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक।
1: जी
0: फिर
1: जी
0: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है, जिसमें ओनली सारा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी देते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, एक सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़ा लोग ऐसे मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ, ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में। आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीज़ों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ, एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे
1: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सॉल्यूशंस,
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर।
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ, एंड इवन टूडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आईशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी

0: तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा,
1: बिल्कुल
0: और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है। तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया, और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
1: तो ये मौका मेरे लिए बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसे रह जाऊंगा। बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहां पर एनवायरनमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक सेरेब्रल पाल्सी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको भी, हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ ही कैन डू, वाइल ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने तो काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, मैंने उसे काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि उसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी लाइक, ही इज टूडे कि वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन हो जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
1: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उनमें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी, कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं। छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूज़िक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है। तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन, बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
0: जी
2: जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में, मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है,
0: बिल्कुल
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा
0: बिल्कुल
2: उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट

0: था, उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
1: जी
0: संगीत का
1: जी
0: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
0: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: मीडियम 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं हेलो वन भावन। इस कार्यक्रम की निर्देशक और संयोजक हैं नवीन सिसोदिया, प्रस्तुति श्रीपाल शर्मा की।
5: हेलो मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का श्रोताओं हाजिर हैं आप ही के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो मन भावन लेकर। श्रोताओं, एक आवाज जो 90 वर्षों से जन जन के कानों में निरंतर सुर संगम की मिश्री घोल रही है,

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांतों को ज्ञान विज्ञान के सपनों को साकार करती वाणी आकाशवाणी। के बोलते रहना क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्जों का ये बहता दरिया अच्छा लगता है। खुशियाँ और उमंगे लुटाती आवाजें सुहानी रातों की हमसफर 90 वर्षों से लगातार जनमन के साथ जुड़ी हुई है।

0: कोई आया तेरी झलक देखी, कोई बोला सुनी तेरी आवाज़। उमंग और हौसलों की उड़ान के साथ साथ निभाती, हर सुख दुख में लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई आकाशवाणी। खूबसूरत यादों का झरोखा बनकर साथ निभाती, बसंत बहार सावन हर रंग में हर मौसम में हमारे साथ।
1: तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो।
0: हम सफर बनकर साथ निभाती, मिलजुल कर रहने और देश प्रेम की भावना का संदेश देती वो वाणी आकाश।

0: गौरवमयी खूबसूरत 90 वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहरहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस फोन कॉल से। हेलो,
1: नमस्कार श्रीपाल जी।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: गांव गमंडिया से जगदीश ढोकिया बोल रहा हूँ।
0: जगदीश जी, क्या हालचाल है आपके?
1: हालचाल बहुत ही बढ़िया। रात आपने जो गोरबंद और गीत गंगा पेश किया था वो हमें जबरदस्त यानी बहुत पसंद आया था।
0: बिल्कुल, ये आप सभी सुनने वालों का प्रेम है आकाशवाणी के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति।
1: और कार्यक्रम आकाशवाणी सोचल के लगातार सुन रहे हैं और लगभग 1.5 महीने के बाद में कॉल कर रहे हैं।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सभी श्रोताओं को मौका मिलता है हमसे रूबरू होने का, अपनी पसंद के गीत सुनने का।
1: आजकल इस बहुत सारे श्रोता को पिछले प्रोग्राम में सुने तो रेडियो तो सुन रहे लेकिन का फोन कभी नहीं मिला था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमें फिल्म सुनना है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है सेहरा।
0: सेहरा फिल्म का गीत आपको सुनवाए।
1: पंख होते तो उड़ाती और रस्सी आवाज, बहुत ही जबरदस्त मीठा गीत है। काफी समय से आकाशवाणी से ये बजा भी नहीं है।
0: कौन लोग हैं आज आपके साथ?
1: सुरेंद्र, विनोद, ज्योति, सरिता, अमना, तमना, सचिन, विष्णु, शिवम और दोहित्ती है मेरी।
0: सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन।
0: हाँ नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
0: सर मैं सुरवाली से लव सोकल बोल रहा हूँ, जिला हनुमानगढ़।
1: लव सोकल क्या करते हैं आप?
0: सर स्टूडेंट हूँ मैं।
1: कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं आप?
0: सर मैं फिफ्थ में हूँ।
1: तो
0: सर
1: रेडियो कब से सुन रहे हैं?
0: रेडियो मेरे दादाजी ने लाके दिया था मेरे को, वैसे 2-3 साल हो गए। दादाजी का नाम है राम प्रताल सोखल।
1: क्या बात है। आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनते?
0: कार्यक्रम हम तो मेरे दादाजी ने बताया था, अभी आज ये होता है कार्यक्रम है लमन भवन, तो
1: अच्छा,
0: दादाजी ने नंबर बताए थे तो आज फोन कर लिया।
1: क्या बात है। आपका फोन भी लग गया है ना, और
0: हाँ
1: पढ़ाई भी अच्छे से करोगे। अभी छुट्टियां चल रही है,
0: छुट्टियां चल रही है।
1: अच्छे से पढ़ाई करो, रेडियो सुनो, आगे
0: हाँ
1: बढ़ो, है ना, देश की
0: सर
1: सेवा करो। तो आज कौन सा गीत सुनवाएं और कौन कौन आपके साथ हैं सुनने वाले?
0: दादाजी राम प्रताप सोखल, मेरे पापा जी का नाम श्रीमान सुशील कुमार, मेरी मम्मी जी का नाम ममता ढूंढाड़ा, और मेरी माता दादी जी का नाम है संतरो देवी।
1: कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: शोले फिल्म का
1: सुनिए आपकी पसंद का।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। कार्यक्रम हेलो मन भावन, मांगीलाल जी चंदेल का स्वागत है।
1: जी सर जी, धन्यवाद, आपको धन्यवाद।
0: हाँ मांगीलाल जी, एक बार ऐसे कहिए कि मैं आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
1: जी,
0: बताएं कैसे हैं आप?
1: बस सर जी, मैं दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी सुनने वालों की दुआओं से हम सब बढ़िया हैं।
1: जी,
0: कैसा है मौसम आपके?
1: मौसम बढ़िया है, बदल हो जाते हैं लेकिन बारिश 19 तारीख को बढ़िया बारिश हुई सर जी हमारे क्षेत्र में, और 19 से आज तक बारिश नहीं है, लेकिन अभी 10-11 बजे से बदल होते हैं और शाम को 4-5 बजे खत्म हो जाते
0: बिल्कुल, धीरे धीरे मॉनसून आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में
1: हैं।
0: आपके भी जल्दी
1: जी,
0: बारिशें होगी। तो बताइए आज कौन सी गीत की बारिश करें?
1: फिल्म का नाम रहेगा शर्मीली और गाने के रहेंगे मेगा छाए आधी रात बैरन बन गई मीडिया।
0: वाह क्या बात है।
1: जी
0: और कौन लोग हैं आपके साथ?
1: सर जी, मेरे साथ में हैं सतीश श्रीवास्तव जी
0: जी
1: और गजानन शर्मा।
0: सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी सुपर हेलो मन भवन।
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन आकाशवाणी
1: हाँ
0: कॉटन
1: जी,
0: सिटी
1: ये
0: चैनल
1: सिद्धिपुर
0: सूरतगढ़।
1: से हीरालाल गजरा बोल रहा हूँ।
0: हीरालाल जी, बहुत सारा स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद धन्यवाद आपका। लग ही नहीं रहा था आज, मैंने क्या ट्राई करते लगे जोरदार में मेरा क्या बचे। गाना आप नोट कर लो, फिल्म में अपनापन।
0: अपनापन,
1: हाँ फिल्म में अपनापन। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।
0: कौन लोग हैं आपके साथ?
1: हमारे साथ तो धर्मपाल है, देव किशन गजरा है, धर्मपाल गजरा है और मेरे साथी हैं जो, क्योंकि मैं ना वरिष्ठ नागरिक जनमंच का अध्यक्ष भी हुई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: उसमें हमारे महावीर जी पुरोहित हैं, धर्मपाल गुज्जर है, गुर्जर सिंह सैनी है और बाकी जितने भी सदस्य हैं हमारे जो सुनने वाले
0: जी
1: सभी
0: जी
1: आपको याद करते हैं। और रात को हम पार्क में बैठते हैं जब यही चर्चा होती है, कहते हैं आप कब आप प्रोग्राम आए तो हमारा यहाँ भी लेना मैंने जरूर लेंगे आपका नाम।
0: बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आज भी आप पार्क में बैठ के रेडियो सुन रहे हैं।
1: हम ना 9:30 बजे चले जाते हैं, वहाँ पर 11 बजे तक बैठे रहते हैं, हमारी मतलब गप्पे शप्पे मारते रहते हैं काफी। हमारा भी नाम आए मतलब जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा है।
0: बिल्कुल हीरालाल जी, आपके और आपके सभी सुनने वाले साथियों के नाम ये गीत।

0: हेलो
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन।
0: हेलो में नमस्कार जी। तो
1: नमस्कार।
0: साहब मेरा जिलो हनुमानगढ़ है, तहसील टिब्बी है और गांव है मेरे तक 4-5 RW भी। नाम है मेरा मुखराम जी मालिया।
1: मुखराम जी, आपका कार्यक्रम हेलो मन भावन में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएं, आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
0: आप तो नहीं ना फिल्म का कोई सुना देना साहब, थोड़ा नाम लेना चाहता हूँ मैं।
1: जी,
0: एक तो पोता है अरमान, अयान खां अरशद है और दोता है अरमान।
1: जी
0: ये साहब है मेरा फोन है, पहली बारी लगा जो करते हो तो बहुत टाइम लगा क्योंकि मेरे को आपका नंबर नहीं मिला। श्रोता मैं पुराना हूँ, ऐसे मैं रेडियो में सुनता हूँ और ये आकाशवाणी जो प्रोग्राम बड़ा इसमें मैं चेजी पर लगा हुआ।
1: अच्छा,
0: हाँ बहुत बड़ा श्रोता जी। हाँ
1: बहुत बढ़िया बात है। मेहनत करते हैं,
0: जी
1: काम करते हैं, काम के
0: जी
1: साथ साथ आप रेडियो सुनते हैं और इतने पुराने श्रोता हैं, आज हमसे रूबरू हुए हैं फोन कॉल के
0: हाँ
1: माध्यम से, तो
0: बिल्कुल
1: हमें भी
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि
0: अच्छा
1: आप
0: क्या चलेगा साहब, एक दोबारा जिंदगी मिल गई मेरे तो जो आपसे बातें होगी।
1: क्या बात है। देखिए, बहुत खुशी मिलती है जब कोई हमारा सुनने वाला श्रोता जो इतने समय से रेडियो सुनता है और जब हमसे रूबरू होता है, तो हमें भी बहुत
0: अभी
1: अच्छा लगता है।
0: हमारी यह साहब जनगणना हुई है उसमें मेरा रेडिया वो जनगणना में लिख कर ले गई है।
1: बहुत बढ़िया। तो ये
0: हाँ
1: भी हमारी एक अनमोल धरोहर है, जो भी हमारे श्रोता रेडियो सुनते हैं, रेडियो रखते हैं। हालांकि अभी तो मोबाइल ऐप पे आप सुन सकते हैं, DRM पे सुन सकते हैं, फिर भी रेडियो का एक आनंद अलग ही होता है।
0: मैं तो अनपढ़ हूँ, फोन पान आपने कोई समझ नहीं, मैं तो खाली
1: जी
0: एक रेडियो सुनता हूँ मैं।
1: जी जी सुनिए आपकी पसंद
0: हाँ।
1: का

0: कार्यक्रम हेलो मन भावन।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: सर, कैसे आप?
0: बढ़िया, आप बताएं सर, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, नई मलिक मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में
0: जी
1: हमारा गांव पड़ता है। सर आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। तुम पास है
0: जी,
1: तुम पास है फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है, तुम पास है फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है, तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी बहुत याद आती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, सात रंगों के शामियाने हैं, दिल के मौसम बड़े सुहाने हैं, भूलने की कोई तदबीर नहीं, याद आने के सो बहाने हैं। बहुत अच्छी लाइनें आपने बताई, तो कौन लोग हैं आपके साथ?
1: माँ बाप है, भाई बहन, चचेरा भाई है, सिस्टर है, इसके अलावा अगर मैं नाम लूंगा तो प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो सकता है। इस वक्त बहुत अच्छी धूप है, गर्मी का सीजन है, गर्मी का मौसम चल रहा है, जैसे जैसे आप मौसम बढ़ेगा।
0: ये कुदरत है, प्रकृति है, जो अपना रंग दिखाती है। अलग अलग क्षेत्र में हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है वो भले ही अलग हो, लेकिन हमारा देश जो है वो एक है।
1: और एक जानकारी, जो अमरनाथ यात्रा है जो हमारे हिंदू भाई के लिए वो भी ऑन हो चुकी है, और जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब है उद्घाटन उन्हीं ने किया है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने।
0: चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो बताएं आज क्या सुनवाएं आप?
1: फिल्म का नाम है तुम बिन, गाने की बोली छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है।
0: सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन।
1: मैं तहसील बादरा गांव अनूप शहर से गजानंद बोल रहा हूँ जी।
0: गजानंद जी, बहुत सारा स्वागत है कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका।
1: गीत सुनना है, सावन को आने दो।
0: बिल्कुल, गीत आपको सुनवाएंगे। बताएं कौन लोग हैं आपके साथ?
1: साथ में जी मैं छोटा भाई है डॉक्टर तारासुर शर्मा है, लड़का है जी अशोक शर्मा है, मुरारी लाल शर्मा है, मदन लाल शर्मा है, महावीर दोरा है और मंजराम नील है जी।
0: चलो, बहुत बढ़िया बात है, आपका रेडियो से इतना लगाव है। सारे कार्यक्रम
1: हाँ
0: आप
1: जी
0: सुनते हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के?
1: हाँ, मैं कार्यक्रम सब पूरे पूरे सुबह वंदना से लेकर के रात को 11 बजे बंद करता हूँ रेडियो।
0: बहुत बढ़िया बात, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन।
0: राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: गांव विदेश करूं, पप्पू राम घाट बोले श्रीपाल जी।
1: पप्पू राम जी, बहुत सारा स्वागत कार्यक्रम में आपका।
0: बहुत शुक्रिया जी, और प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा जी। मतलब हेलो मन भवन,
1: अच्छा हेलो मन भावन बढ़िया लगता है आपको?
0: बहुत ही अच्छा लगता है जी। वैसे मैं तो बहुत कई सालों से सुन रहा हूँ लगातार।
1: अच्छा, तो दूसरे कार्यक्रम कैसे लगते?
0: दूसरे कार्यक्रम भी बहुत सूरतगढ़ के जितने भी प्रोग्राम है बहुत अच्छे लगते हैं।
1: चलिए बहुत बढ़िया बात है। बताएं मौसम कैसा है आपके, बरसात वगैरह हुई?
0: बरसात तो जी वैसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन काम चलाऊ ठीक है। खेती बाड़ी में बड़ा अच्छा है, बढ़िया हो गई काम चलाऊ।
1: अच्छी बात है। तो आज कौन लोग हैं आपके साथ?
0: हमारे साथ है जी फ्रांसी के राजकुमार डुड्डी जी हैं, मांगेलाल चंदेल साहब है मध्य प्रदेश के, और राजू निगलानी जी हैं, भाष लूणा जी हैं, और सरकावाड़ी गांव से जगजीवन शर्मा जी हैं, और गगमार सिंह डागला जी हैं, और बसंत सिंह चंद जी हैं, और सतीश निगलानी जी हैं।
1: क्या सुनवाएं आपको, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
0: ये? आप गोपी फिल्म का गीत सुना दीजिए जी।
1: सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनभावन।
1: हाँ जी, हेलो मनभावन, कौन बोल रहे हैं आप?
0: जी मैं श्रवण बिश्नोई।
1: श्रवण जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: पीली बंगा लखा सर।
1: लखा सर से?
0: हाँ जी।
1: तो बताएं कैसे हैं आप?
0: ठीक है जी।
1: क्या काम करते हैं आप?
0: किसान है जी।
1: क्या बिजाई कर रखी है अभी? क्या चल रहा है खेती में?
0: अभी खेती में गवार की बिजाई।
1: इसके अलावा नरमा मूंग?
0: नरमा मूंग की खेती आस पास में है थोड़ी बहुत।
1: तो क्या सुनवाएं आपको?
0: वो एक गाना सुनना है अपना देश के का किशोर कुमार।
1: अपना देश फिल्म का किशोर कुमार की आवाज में गीत सुनवाएं आपको।
0: हाँ जी
1: सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आज का हेलो मन भावन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखें। आज इस कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया, और अब श्रीपाल को इस बात के साथ इजाजत दीजिए कि बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेलो वन भवन। आज की प्रस्तुति श्रीपाल शर्मा की थी और इस कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया।

बेटी 1520 7.9 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों

0: और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।